मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:56 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

0: IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में देशभक्ति गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
1: इक्कीसवीं सदी जिसमें अंतरिक्ष को जीता जा चुका है और प्रौद्योगिकी ने अपनी जड़ें गहरे तक जमा ली हैं, अध्यात्म का प्रश्न अभी भी अपनी केंद्रीयता में बना हुआ है और पूरे विश्व का रुझान अपनी ओर जुटा रहा है। वैभव और समृद्धि ने मनुष्य की शांति छीनी है और उनका कारण आज के आदमी की अपनी ही विचलित मनोदशा है। इस क्रम में मनुष्य ये समझ पा रहा है कि उसका खोया हुआ मन का आनंद उसे आध्यात्म ही वापस दिला सकता है। सृष्टि ने जितना संसार हमारे बाहर रचा है, उतना ही हमारे भीतर भी रचा बसा है, भले ही हम उसे जाने या ना जाने। भीतर के संसार को जानना किंचित कठिन है। मन और आत्मा से जुड़ा बंधा और इस सब के बीच एक ध्रुव सत्य की तरह परमात्मा भी है। इस सब को संसार समेटे है, उसे जानने की कोई औपचारिक परिपाटी नहीं है, लेकिन एक विद्या है जरूर जो इस दिशा में आदिकाल से अपना काम कर रही है, वो विद्या है आध्यात्म। विज्ञान हमें विकास की ओर ले जाता है, लेकिन सुख शांति और आनंद की कुंजी आध्यात्म के पास है और यही अंतिम सत्य है। अध्यात्म और विज्ञान जानने की दो समानांतर कलाएं हैं। विज्ञान बाहर जानना है, अध्यात्म भीतर जानना है। विज्ञान यंत्र के द्वारा जानना है, अध्यात्म चेतना के द्वारा जानना है। जब सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यंत्र के द्वारा परमाणु या निहारिकाएं देखी जाती हैं तो हैरानी होती है, विराट और सूक्ष्म चमत्कार से लगते हैं। परमाणु तो हमेशा से मौजूद रहा है, जानबूझकर अदृश्य नहीं था, पर इसका देखने का यंत्र विकसित नहीं हो पाया था। इसी तरह परमात्मा भी नित्य और सर्वत्र है, पर मनुष्य के अंदर ध्यान समाधि जब तक फलित नहीं होते तब तक हम उसे जान नहीं पाते। ध्यान और समाधि कैसे संभव हो सकती है, इसकी भी विधि है। इनमें अवरोध क्या आता है, कठिनाई क्या आती है? जीव की प्राथमिक अवस्था में ज्ञान तंत्र नहीं होता, लेकिन अनुभूति होती है। यह एक प्रकार की समाधि होती है। वृक्षों की तरफ देखें तो उनमें गहरी शांति और समाधि की झलक मिलती है। उनमें ज्ञान नहीं होता, मगर उनमें अज्ञान भी नहीं होता। उनके लिए कोई परिचित नहीं, पर अपरिचित भी नहीं है। इसी तरह छोटे बच्चे में जब तक कान आँख आदि की ज्ञानेंद्रियाँ पूरी तरह काम नहीं करती, वो अंतस्धारा को अनुभूत करता रहता है। उसे देखकर किसी ऋषि मुनि की समाधि याद आती है, लेकिन समाधि का शुद्धतम रूप तो ज्ञानेंद्रियों के निर्माण से पहले अनुभव होता है। परमात्मा ने ये परम सौभाग्य सबको दे रखा है। बाद में चेतना विभिन्नता का गुण जब ग्रहण करती है तो समाधि टूट जाती है। प्रत्येक भिन्नता हमारी चेतना के मध्य दीवार का निर्माण करती है। एक द्वार बंद हो जाता है, अंतश्चेतना बाहरी चेतना के बीच दीवार और द्वारों की एक श्रृंखला बन जाती है। चेतनाएं एक दूसरे के लिए रहस्य बन जाती हैं। इस गुण से कार्य दक्षता में वृद्धि होती है, समाज के विकास में तीव्रता आती है। लेकिन जब सुख शांति आनंद की बात आती है तो मनुष्य को नहीं मिल पाता। आज के युग में व्यसन वासना ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। उससे भी बुरी बात यह है कि उसे सामान्य रूप से लिया जाने लगा है। एक व्यक्ति रिश्वत लेता है, कहता है सभी लेते हैं। वो नरक की अर्थ

0: व्यवस्था में जी रहा है। एक बार ध्यान अचेतन में उतर जाए फिर कोई भी व्यसन वासना हावी नहीं हो सकेगी। पिट्यूटरी ग्रंथि जब सक्रिय होती है तो उसके द्वारा भेजे गए हार्मोन दूसरी ग्रंथियों को भी सक्रिय कर देते हैं। इसी प्रकार ध्यान की सक्रियता अचेतन के बहुत से कारकों को सक्रिय कर देती है। हमें पुराने रूढ़िवादी विचारों को छोड़ना होगा। आत्मा को कठोर और कोमल एक साथ माना जाना चाहिए। व्यक्ति को गलत आचरण, व्यसन, हिंसा, अहंकार, मादक गुणों के प्रयोग से बचना होगा।
1: आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था माधुरी महापात्र का और स्वर था नारायण सिंह बघेल का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। गायिका हैं मालिनी नाम्बियार, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। गायिका थी मालिनी नाम्बियार, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौकोट।
1: खेतिहार भाई बहन मन, असन तो सोयाबीन चुनाव के आमी सफाई सुन लो से और आमी जानू से कि एचो कमानी बोले किसान भाई बहन मन खूबे करसो तो और आमचो देश ने तो आमी दखू से और जानू से कि दिनों दिन एचो कमानी बढ़ते जाए से। सोयाबीन ने देह पाए का जे अधिक प्रोटीन तत्व मिरे से और ये देह ने बाढ़ तो चर्बी जे के कोलेस्ट्रॉल बलतो रह से एक नियंत्रित करे से बलों ने कम करे से। सोयाबीन कमानी का जे शुष्क गर्म बलों ने खिंडिक सूखा जलवायु रतो जरूरी आए अरु 60 ले 65 सेंटीमीटर वर्षा जोन क्षेत्र मन ने हो से उन क्षेत्र मन काजे एचो कमानी निको हो से। सोयाबीन चो कमानी काजे जल निकासी चो अच्छा उवाड बीती डोमट माटी निको रहे से। बुनतो पहिल बेड़ा के अच्छा खाप जोत करून पाटा चलाउन भूई के समतुल करतो रहे। भूई ने 1000 लीटर पतंजलि संजीवक खत के पानी ने मिसान बुनतो पहिल 2.5 एकड़ हिसाब ले चीज तो रहे। इत्रो करून एक हफ्ता पाछे फिर हारक हुनके खाप जोड़ करून बराबर बना तो राय। हुंचो पाछे हमके हुता फिर बीजा के मंडा तो राय। जोन किसान भाई बहन मान सोयाबीन चो कमानी कर सोच जाले 2.5 एकड़ भूई काजे 25 किलो बीजा के हुन मन लगा सकोत। बीजा के लेन वार 3 ले 4 सेंटीमीटर गड़िया ने गड़िया तो राय और बूटा ले बूटा चो झुंदुरिया आए हुनके आमके 30 सेंटीमीटर चो हिसाब ले राख तो राय। तो दादा दीदी मन कहीं कमानी हो जैसन कि हमें जानू से हुंचो कमानी चो पहल हमके किस्म और हुंचो ले मिलतोर उपज चो ध्यान के करुन हुन कमानी के बीजा के हमके मन करतो रहे और हुन हिसाब ले हुंचो कमानी करतो रहे। सोयाबीन ने उन्नत किस्म मन ने हो से सोयाबीन अंकुर दुर्गा अलंकार पी के 262 और पी के 327 ये किस्म मन ले हमके 16 क्विंटल तक उपज मिरे से अरु सोयाबीन कमानी ने संजीवनी खत अरु बायोगैस स्लरी के बीजा बुनलो पहिल जो नाय पहिल हार ने आम के 1500 लीटर के उता देतो रहे। फिर दूसर हार ने हुने वो खत के 1000 लीटर खत के फिर हम के उता लगातो रहे। दादा दीदी मन सोयाबीन ने फूल निसक तो पहिल पानी देतोर खूबे जरूरी है। असन ने फूल ने बीजा जो बाली मन रहे से हुन झपके निसके से बुनलो 20 ले 25 दिन पाछे लाटा बूटा जेके आमी खरपतवार बले बोलू से हुनके हमके झीक तो राय। सोयाबीन कमानी ने जुगे करून तना छेदक कीड़ी अरु इल्ली मन होय से। ए मन के मरला तो काजे करंजादी नाव चो ओखत के 40 लीटर पानी ने घोरून चीज तो राय। असने रोग मन ने जुगे करून सफेद माछी रोग होय से। सफेद माछी रोग ले आम के बूटा के बचातो काजे 5 लीटर निम्बादी ओखत ने 100 मिलीलीटर अभिमन्यु ओखत के 40 लीटर पानी ने मिसान घोरतो राय और दुई हार करूँ छींचतो राय। सोयाबीन फसल ने पाना चो प्यूरातो बेरा आम के जानतो राय कि हुन फसल एदाय पाकुन तैयार होली से और आम के हुनके कटानी करतो राय। तो पाना सूखते सूखते पहिल आम के हुनके कटानी करून एक हफ्ता काजे थेवा तोराय बोलों ने खिंडिक सूखा तोराय हुन फर के और पाछे हुनके आम के मीण तोराय और हुनके मीणुन दाना और हुनचो जोन कुधूर जेके भूसा बल बल तोर हो से हुन भूसा के अलगा तोराय। तो किसान भाई बहन मन असन सांगलो हिसाब ले तुम्हें आप लोग सोयाबीन चो कमानी के करलास डाले 2.5 एकड़ ने तुमके 16 क्विंटल बीजा और 25 क्विंटल भूसा मिरे से और इतरो लेन तुम्हें जाना कि आम के बीजा संगे संगे हुन भूसा लेवल लाभ मिरे से तो असन हिसाब ले तुमके अधिक ले अधिक लाभ बल मिरुक सके।
0: अभी बेड़ा खाड़ा चौकोट का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली में लीजिए सुनिए मावली माता पाड़। वादक कलाकार हैं पाकलू और साथी।

हुलहुली में आप सुन रहे थे मावली माता पाड़। वादक कलाकार थे पाकलू और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे शाम 4:00। संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे दोपहर 2:00। सुबह 7:05 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर आकर्षण। आप सुनेंगे वार्ता, महिलाओं की स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता के सही मायने।

मिनट पर। सुबह 9 बजे पाटा वेनार में सुनेगा सुखदई बघेल और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के गीत सुबह 9:30 पर। गुलशन में आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत सुबह 10 बजे। सुबह 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में प्रस्तुत करेंगे धुरवी आदिवासी गीत। कलाकार होंगे सामनाथ बघेल और साथी। सुबह 11 बजे एक ही कलाकार में हमारे आज के कलाकार होंगे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। सुबह 11:30 पर पेश करेंगे गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर होगा कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट। FM बैंड 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर सुनेगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे जलधर और साथियों का गाया हल्बी गीत। बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। डांडाबाली में प्रस्तुत करेंगे धुरवी लोकगीत रात 8 बजे। कलाकार होंगे बालमती बघेल और साथी। पिलामन काजीकोट में आज सुनेगा कल्पना चावला के बारे में रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी फूल सिंह कश्यप की। रात 9:15 पर ग्राम पंचायत की विकास गाथा में आप सुनेंगे वार्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। लोकगीतों के कार्यक्रम रैनी में सुनेगा बंशीराम कश्यप और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनेगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिताविषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्याम ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवाद रोधी सहयोगम इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य

0: उक्तम यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्रहवें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का

0: भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

नमस्कार श्रोताओं, आज के नमस्कार जगदलपुर के साथ मैं तृप्ति परिडा आज आपके लिए है वार्ता और मधुरिमा।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
3: श्रोतो, बारिश की फुहारें धरती को हरियाली और जीवन को नया उत्साह देती है। ये वर्षा खेती, जल स्रोतों और पर्यावरण के लिए आवश्यक है, लेकिन यही बारिश जब सामान्य सीमा से अधिक हो जाती है तो उसका रूप विनाशकारी बन जाता है। आज देश के अनेक हिस्सों में हो रही लगातार और अत्यधिक बारिश जनजीवन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तो कहीं जलभराव, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण और वनों की अंधाधुंध कटाई जैसी परिस्थितियां इस समस्या को और गंभीर बना रही हैं। जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो वर्षा का स्वरूप भी असामान्य हो जाता है। जुलाई माह शुरू ही हुआ है, अभी तो पूरा जुलाई और अगस्त माह बचा है। सावन और भादों की झड़ी वाला मौसम

आने वाला है। और अगर परिस्थितियां आज जैसी ही रही तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। श्रोताओ, बारिश जीवन का आधार है, लेकिन इसकी तीव्रता हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण की कितनी आवश्यकता है। अगर हम प्रकृति के साथ सही तालमेल रखते हैं तभी बारिश की हर बूंद खुशियां, हरियाली और समृद्धि का संदेश लेकर आएगी, ना कि किसी विपदा का।

किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान

0: हितों की जुबानी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: नमस्कार, जगदलपुर में आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं वार्ता। महिलाओं की स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता के सही मायने। वार्ताकार हैं माधवी यादव।
3: यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्त्वे तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। भारतीय संस्कृति में नारी को सृष्टि की आधारशिला माना गया है। वो केवल एक परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति की भी प्रमुख शक्ति है। फिर भी लंबे समय तक महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बंधनों में रखा गया। आज शिक्षा, तकनीक और बदलती सामाजिक सोच ने महिलाओं को आगे बढ़ने के अनेक अवसर दिए हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्वयं की पहचान और वास्तविक स्वतंत्रता का प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। महिलाओं की स्वयं की पहचान का अर्थ केवल किसी रिश्ते जैसे किसी की बेटी, पत्नी या माँ के रूप में पहचाना जाना नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, अपनी प्रतिभा, विचार क्षमता और निर्णयों के आधार पर समाज में सम्मान प्राप्त करना है। इसी प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ केवल घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, बल्कि अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने, सम्मानपूर्वक जीने, शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार चुनने, समान अवसर पाने और भय मुक्त वातावरण में जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है। महिला भी सबसे पहले एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उसकी अपनी इच्छाएं, सपने, भावनाएं व लक्ष्य होते हैं। जब समाज किसी महिला को केवल रिश्तों के आधार पर पहचान देता है तब उसकी व्यक्तिगत पहचान पीछे छूट जाती है। वास्तव में किसी महिला की सबसे बड़ी पहचान उसका आत्मविश्वास, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा और उसके द्वारा समाज में दिया गया योगदान होना चाहिए। जब किसी महिला की अपनी पहचान बनती है तब वो परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभाती है। आज की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, साहित्य, कला, न्यायपालिका और उद्यमिता जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। वे केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही बल्कि देश और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। जब भी स्वतंत्रता की बात होती है तो लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं। कुछ लोग इसे मनमर्जी करने का अधिकार समझते हैं तो कुछ इसे सामाजिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाने के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन में निहित होती है। महिलाओं की स्वतंत्रता का अर्थ किसी के विरुद्ध खड़ा होना नहीं है बल्कि स्वयं के पक्ष में खड़े होने का साहस रखना है। इसका अर्थ है अपने विवाह, करियर और जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का अधिकार सम्मानपूर्वक

जीवन जीने की स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बिना किसी भय, हिंसा या भेदभाव के जीवन जीने का अधिकार और अपनी प्रति

परिवार से होती है। यदि परिवार अपनी बेटियों और बेटों को समान अवसर प्रदान करे, दोनों की शिक्षा पर समान ध्यान दे, दोनों के सपनों का सम्मान करे और दोनों को समान संस्कार दे, तो समाज में भेदभाव अपने आप कम होने लगेगा। अक्सर देखा जाता है कि बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग अपेक्षाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। लड़कों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को कई बार अपनी इच्छाओं को दबाना सिखाया जाता है। यह सोच धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। जब एक बेटी को यह विश्वास मिलता है कि उसका परिवार उसके साथ है, तब वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी साहसपूर्वक सामना कर सकती है। परिवार का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। महिलाओं की पहचान और स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती है, बल्कि परिवार और समाज को भी नई दिशा देती है। एक शिक्षित महिला आत्मनिर्भर बनती है, सही और गलत में अंतर समझती है, अपने बच्चों को बेहतर संस्कार और शिक्षा देती है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने का साहस रखती है, अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय समझदारी से लेती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की पहचान को मजबूत बनाती है। जब महिला अपने श्रम और प्रतिभा से आय अर्जित करती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने निर्णय अधिक स्वतंत्रतापूर्वक ले सकती है। महिलाएं अब अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, नई भूमिकाएं निभा रही हैं और रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर राजनीति, विज्ञान और कला के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। आज अनेक महिलाएं सीमित संसाधनों के बावजूद अपने परिश्रम और लगन से नई ऊंचाइयों तक पहुंची हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सफलता केवल सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास पर भी आधारित होती है। यह भी आवश्यक है कि महिलाएं स्वयं अपनी क्षमता को पहचानें। समय के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। आज भी अनेक स्थानों पर महिलाओं की सफलता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है या उनके निर्णयों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि पुरुषों के निर्णयों को। महिलाओं की स्वतंत्रता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए परिवार, समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। परिवार व समाज को चाहिए कि वह महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाएं और भेदभाव समाप्त करें। वहीं सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, कौशल विकास और समान अवसर से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता केवल अधिकार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। इसके साथ आत्मसम्मान, जिम्मेदारी, नैतिकता और संवेदनशीलता भी आवश्यक है। महिलाओं की स्वतंत्रता का उद्देश्य परिवार से दूरी बनाना नहीं, बल्कि परिवार और समाज में समान सम्मान और समान अवसर प्राप्त करना है। जब महिलाओं को निर्णय लेने, अपनी प्रतिभा दिखाने और सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तभी समाज वास्तविक अर्थों में विकसित होता है। महिलाओं की स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता किसी भी आधुनिक

0: लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। एक महिला केवल किसी रिश्ते की पहचान नहीं, बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। उसे समान अवसर, सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनने का अधिकार मिलना चाहिए। जब प्रत्येक महिला अपने सपनों को साकार करने के लिए स्वतंत्र होगी, जब उसके विचारों का सम्मान होगा, जब उसे समान अवसर व सुरक्षित वातावरण मिलेगा, तभी वास्तविक स्वतंत्रता का सपना साकार होगा। महिलाओं का सशक्त होना केवल उनका अधिकार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आवश्यकता भी है। इसीलिए हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर महिला अपनी पहचान के साथ सम्मानपूर्वक, आत्मविश्वास से और स्वतंत्र होकर जीवन जी सके। यही महिलाओं की स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता के सही मायने हैं। धन्यवाद।
1: महिलाओं के स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता के सही मायने, इस विषय पर आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थी माधवी यादव। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर दिन हमारे आसपास बिखरी होती है। सच तो ये है कि जीवन का असली आनंद बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के उन अनमोल पलों में छिपा होता है जो बिना किसी शोर शराबे के दिल को सुकून दे जाते हैं। सुबह की ताज़ी हवा, चिड़ियों की मधुर चहचहाट, अपनों की मुस्कान या एक प्याली गर्म चाय भी पूरे दिन को खुशनुमा बना सकती है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या किसी पुराने दोस्त का हालचाल पूछ लेना या किसी बच्चे की मासूम हंसी सुन लेना भी मन को अपार खुशी देता है। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हम बड़ी मंजिलों की तलाश में इन छोटे छोटे सुखद पलों को अनदेखा कर देते हैं। जब यही पल हमारे मन को शांति देते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते, खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़े अवसर का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम किसी दिन मिलने वाली हर छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उनका सम्मान करना सीख लें, तो जीवन अधिक सरल, सुंदर और संतोषपूर्ण बन सकता है। आखिरकार खुशियाँ खरीदी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। यानी हर दिन छोटी छोटी खुशियों को जीने की आदत बनानी है, क्योंकि जब हम इन अनमोल पलों की कद्र करना सीख जाते हैं, तब ज़िंदगी अपने आप और भी खूबसूरत लगने लगती है।

0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। वक्त है मधुरिमा का, पर पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: पेश है मधुरिमा।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इन

0: इश्क में शिकायत भी होती है, इल्तिज़ा भी होती है, और कभी कभी एक नज़र में ही सारी दास्तां कह जाती है। जब दिल की आह असर कर जाए तो मोहब्बत अपने मुकाम पर पहुंच जाती है।
1: पेट्रोल खत्म हो गया।

0: किरण मेरी बात तो सुनो।
1: सुना जाकर अपनी चहेती को, मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता, क्या उसी के पास? छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ दो, वरना
2: प्यार सच्चा हो तो ये वक्त भी रुक जाता है।
1: वक्त चाहे रुक जाए, मैं नहीं रुकूंगी।

0: सुना था हसीनों के गुस्से से लोगों के होश आवाज उड़ जाते हैं, लेकिन आपके गुस्से से तो गाड़ी का पेट्रोल उड़ गया। देखिए उधर मत जाइए, रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर बहुत मिलते हैं।
1: हुआ करे, तुमसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगा।
2: आ गए आपके कदमों पे उतर कर बादल।
1: जाओ जाओ, मुझे न बनाओ।

इश्क की सल्तनत में ना कोई बादशाह होता है ना कोई गुलाम, वहाँ तो बस दो दिलों की हुकूमत चलती है, जहाँ हर कहानी किसी राजा और रानी की कहानी बन जाती है।

दिल से निकली सदा में अजीब सी कशिश होती है, वो पुकार नहीं एक एहसास बन जाती है, और जब उस एहसास को सुर मिल जाए तो वो तराना बन जाता है।

हुस्न की मिसालें तो दुनिया बहुत देती है, मगर कुछ लोग मिसाल नहीं खुद एक कहानी बन जाते हैं, जिन्हें देखकर हर तुलना छोटी लगने लगती है।

मोहब्बत में मनुहार का अपना ही मज़ा होता है। कभी एक मुस्कान रूठे दिल को मना लेती है, तो कभी प्यार से लिया गया एक नाम सारी दूरियां मिटा देता है।

दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार

0: आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से

0: एन्युअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसूलिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी का

0: कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है।

0: के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
3: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेट होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।

अगला गीत आइए सुनते हैं भत्री बोली में, स्वर है नीला और साथियों का।

0: आस लगी मन गाँव दगी दबले बनवा मीर भाई सुबती रानबले बनवा मीर भाई सुबती भाई पाटे ढूंढा पूरे पुरंदी
1: आशा बोली बाके आशा दे रही बाटे गोर जिला पानी रे भाई सुबती रानबे बाटे गोर जिला पानी रे भाई सुबती भाई बाटे ढूंढा पूरे पुरंदी
0: काचा खोएला री मधुर जुरे माच डगाईला तले रे भाई सुबती रानबे भाई सुबती भाई पाटे ढूंढा पूरे पुरंदी।

ধন মাঝি কাজে রতন চুড়ি রাধলু সুগসি বলি রায় সুবতী রান বলতি।

মুনে হাত দই না কান তুই লেহরিয়া জয় মুই রে ভাই সুবতী রান ভবতী।

0: আমি বুবু বাজি সিঙ্গুরি সরি আমাকে
1: लोकमंजरी में आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। पाटा वेनार में लीजिए सुनिए सुखदेव बघेल और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत।

ಮುಗೋಟ್ ವೇಲ ಮಾಲಿ ನಾನೇಯೋ ಕೆಯು ಪತಿಯೋ ಹುಯ್ಮೆ ದೇಕೆ ಜೋ ಬಾಗ

पाटावेनार में आप सुन रहे थे सुखदई बघेल और साथियों का गाया ध्रुवी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कभी हमने नहीं

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के गीत, जो 1969 में प्रदर्शित एक रोमांटिक संगीतमय और पारिवारिक फिल्म है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण प्रमोद चक्रवर्ती ने किया। फिल्म की कहानी प्रेम, पारिवारिक रिश्तों और गलतफहमियों के इर्द गिर्द घूमती है। अपने मनोरंजक कथानक, खूबसूरत फिल्मांकन और शानदार संगीत के कारण ये फिल्म उस दौर की सफल फिल्मों में गिनी जाती है।

जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न जोले, हाय देखो जिधर में शोले ही शोले।

तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के लगभग सभी गीत लोकप्रिय हुए। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया। गीत हसरत जयपुरी और राजेंद्र कृष्णन ने लिखे। फिल्म के गीतों के लिए स्वर दिया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।

0: एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल तथा समयबद्ध बनाना है। वहीं बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण लेने की व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के डूमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधिसंखना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया जाएगा तथा उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग को भी समान महत्व दे रही है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल 8 जुलाई को निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने

एसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यह परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। गुलशन में लीजिए सुने शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म चितचोर से, स्वर यशुदास और हेमलता का, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। ये गीत राग मियां मल्हार पर आधारित है।

गाइड अगला गीत इस फिल्म से जो राग गॉड मल्हार पर आधारित है, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द शैलेंद्र के, संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म नवरंग से, स्वर दिया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, बोल भरत व्यास की, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने, राग है पंचम मालकोस।

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म काजल से, स्वर आशा भोसले का, गीत साहिर का, संगीत रवि का, राग है दरबारी कानड़ा।

लीजिए आप सुनिए फिल्म प्रोफेसर का गीत, जो राग पहाड़ी और राग शिवरंजनी पर आधारित है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म सुर संगम से। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीतकार वसंत देव, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गीत राग कलावती।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे सामनाथ और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार।

0: अड़ऊ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी। आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स FM बैंड, 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11:01 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

अनुभूति सांसों से होता है, जो वादक की भावनाएं और श्वास मिलकर सुर को अद्वितीय बनाते हैं और सुनने वाले के मन को शांत और एकाग्र कर देती है। और इसी वाद्य यंत्र के वादक महान और अद्वितीय कलाकार हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया।

पंडित हरि प्रसाद चौरसिया विश्व के महानतम बांसुरी वादकों में से एक हैं। आपकी वादन की अनूठी शैली ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। आपकी संगीत साधना वादन तकनीक की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, या यूं कहें कि शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। बांसुरी की सुर को हृदय की गहराइयों और अंतरात्मा से महसूस किया जाता है। शायद इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय है। बांसुरी को पहले केवल लोक वाद्य यंत्र माना जाता था। आपने इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रमुख स्थान दिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय फिल्मों में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर शिवहरि के नाम से जुगलबंदी में महारत हासिल की और शानदार संगीत दिया।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। आपने अपने करियर की शुरुआत एक गायक के रूप में की थी, बाद में आप बांसुरी वादन की ओर रुख किया और अन्नपूर्णा देवी के सानिध्य में संगीत की गहन शिक्षा लेकर अपनी वादन शैली को निखारा, जिससे आपके वादन में एक जादुई स्पर्श मिला। इसी साधना ने वादन को अद्भुत गहराई, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्रदान की। आपने सिद्ध कर दिया कि साधारण सी मानी जाने वाली बांस की बांसुरी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का अत्यंत प्रभावशाली वाद्य यंत्र बन सकता है। आपकी प्रस्तुति में रागों की गंभीरता, लोक धुनों की सहजता, भावनाओं की मधुर अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आपके वादन में प्रकृति की शांति, नदियों का कलकल, पक्षियों का कलरव और मानवीय संवेदनाओं का स्पंदन सहज ही अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले ही इसका जिक्र किया था, भारतीय सिनेमा के संगीत

श्रोताओं, अब बात करते हैं उनके जीवन की कुछ खट्टी मीठी पलों की। आपका जन्म 1 जुलाई सन 1938 को इलाहाबाद में हुआ। आपके पिता एक सुप्रसिद्ध पहलवान थे। पिता की इच्छा थी कि बेटा भी अखाड़े में कुश्ती के दांव आजमाए, लेकिन हरि प्रसाद का मन तो बचपन से ही संगीत की स्वर लहरियों में रमता था। वे बताते हैं, अखाड़े में तो मैं जाता था, वहाँ कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को पटक रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पिता का मन रखने के लिए अखाड़े में जाता जरूर था, पर मेरा ध्यान राग और सुरों में लगा रहता। संगीत के प्रति ये दीवानगी उन्हें घर से बाहर ले आई। टाइपिस्ट की नौकरी की, लेकिन बांसुरी की पुकार ने आपको कटक ओडिशा के आकाशवाणी के संगीत विभाग तक पहुंचाया, जहां वे बांसुरी वादक के रूप में नियुक्त हुए। ये वो दौर था जब बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में गंभीरता से लेना अभी बाकी था। बाकी की बातें इस गीत के बाद।

पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने लंबे समय तक आकाशवाणी में संगीतकार के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद भुवनेश्वर से मुंबई की यात्रा की और इसी यात्रा ने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के समृद्ध परंपरा में अपनी साधना, प्रतिभा और समर्पण से संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपकी बांसुरी की मधुर तान ने भारतीय संगीत को उसकी आत्मा से परिचय कराया। आपने मुंबई और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना कर गुरु शिष्य परंपरा को सशक्त बनाया।

पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को संगीत के प्रति समर्पण, सफलता, सरलता, कठिन साधना, विनम्रता और त्याग ने औरों से एक विशिष्ट स्थान दिलाया। आपको संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। आपके पुरस्कारों की लंबी फहरिस्त है, प्रमुखतः

पद्म भूषण पुरस्कार सन 1992 में भारत सरकार द्वारा, साथ ही सन 2000 में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया, जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, यश भारती सम्मान, सुमित्रा रचत राम अवार्ड और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से आपको सुशोभित किया गया है। इन सम्मानों से बढ़कर श्रोताओं का भरपूर प्रेम जो आपके लिए है। आपकी बांसुरी की मधुर धुन अद्वितीय और मनमोहक है, जो न केवल सिर्फ कानों को प्रिय लगती है बल्कि आत्मा से भी संवाद करती है। बांसुरी की धुन से न केवल मनुष्य बल्कि सारी सृष्टि मंत्रमुग्ध हो उठती है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारे आज के कलाकार थे सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जाँच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पहली गजल हरिहरन की आवाज में, शायर हैं मुजत्तर सिद्दकी।

अगली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में कलाम, नजीर बनारसी का है।

कार्यक्रम के आखिरी में आइए सुने रियाज उर रहमान का कलाम अदनान सामी की आवाज़ में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इस

0: की आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
0: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।

0: जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
1: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
1: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।

0: बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था।

0: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
1: अरे धृता जी।
2: हाँ भैया।
1: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
1: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज, अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या, तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
1: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
1: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञदत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
1: जी पिताजी।
3: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
1: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
1: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
0: जी पिताजी।
3: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
0: वो पिताजी।
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं, तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
0: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
0: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
4: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
0: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
4: हाँ।
0: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
0: जी?
3: कल हस्तिनापुर जाना है।
4: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
4: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
0: जी पिताजी।
4: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार है।
3: बहुत अच्छा।
4: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
0: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
4: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
4: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
4: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
4: अच्छा
0: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
0: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली, पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
5: और क्या
0: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
0: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। हाँ। अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना, आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
0: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
4: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
0: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
4: हाँ।
0: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे
1: हैं। इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो ये शुरू हो गई।
1: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: लगता नहीं जीतेगा।
6: वो पहुंच गया जीता।
7: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्र

0: को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
1: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
2: अरे हाँ चलो पास से देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो।
2: अरे ये देखो कितना
0: अच्छा घोड़ा। वाह इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
2: इसे पकड़ लेते हैं।
0: चलो चलो
2: अरे अरे अरे चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: ये पकड़ा।
0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
4: छोड़ दो ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: हाँ हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमने पकड़ा है ये।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
1: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्यों को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही। अरे देखो
1: क्या
0: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
1: हाँ। अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
1: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
1: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
5: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर दुआर कार्यक्रम सुनतो सपाए आया मन दीदी मन बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के मैं तुमचो तारा करें से जुहार। तो बहिन मन कसन आसास तुम्ही सपाए नगत नगत आसास बेकाय असनी नगत नगत रहा बहिन मन तुम्ही सपाए तेवे तो मके बले नगत और हरिक लागे दे आय कसन। बहिन मन ये

केबे में तुम चो संगे गोठिया ऐसे ने गोठिया ऐसे और दखा गोठिया तो ने बाय बाय हूँ आए असन ने पीला मन बोले बोलुक नी मुरियात कि तारा दीदी आजी फेर भूलक ली काय कसन बोलुन बाती असनी बस उत पे कहे पीला मन ने ताला तारा दीदी आजी फेर भूलक ली काय नो बोलुन तो मस असन नवाए मचो सुंदरा सुंदरी मन मैं तुमके कसन भूल को कुलाए सके तुम ही सपाय पीला मन के मैं के बई नहीं भूल के तो आले पहिल मया धरा था तुम ही सपाय पीला मन के तुम चो तारा दीदी बाटले खूबे खूबे मया और चुमा तुम ही सपाय बले नंगत नंगत आसास बेकाय और आशा करें से तुम स्कूल जा तो पीला मन रोजे दिना स्कूल जाऊन अच्छा ले पढ़ई लिखई के कर सास बेने मन लगन भाती रोजे दिना स्कूल जाहा मन लगाउन भांति पढ़े लिखे के करा बड़े मनुख बना नाव कमावा आपलो नाव के आपलो आया बाबा चुनाव के घर परिवार और संगे संगे गांव पारा चुनाव के बले ऊपरे उठावा हाय। और देखा पीला मन ये नंगत गोठ मन के तो मैं तुमके बल्ले मांतर आउर बल्ले नंगत गोठ मन आसे मचो लगे तुम चो काजे तुम ही नहीं आपलो आया बाबा घर परिवार चो लोग के मुर्रे नी बिटावा उन मन के सुना उन मन काय बल सोत काय गोठियाय सोत और उन मन नाम के काय काय बल सोत उन मन चो बल्लो गोड़ बात मन के धरा काय सांग सोत काय समझा सोत और उन मन चो जोन बल तो गोठ मन आए उन मन के नहीं तुम इस अपाय मन दे उन भांति सुना और समझा। देखा घर परिवार चो लोग गांव पारा चो सपाय लोग के सियान सजन के नानी बड़े सपाय लोग मन के नहीं मान दे उन भाती काय सुंदर मयाले गोठिया तो राय तुम्ही असनी करा पीला मन और आम के नहीं नंगत मनुक बनुन भाती रतो राय और तुम्ही पीला मन बले नंगत मनुक बनुन भाती रहा है। दखा तुम चो तारा दीदी चो बल्लो ये गोठ मन के नी भूलका दखा सुरता संगा वहाँ पीला मन। हाँ तो बहिन मन दखा बरसा चो समय आए अने असन बेरा दखा खिंडिक आगर बीमार बाट फैलुक लाए सके से तो असन ने आम के पहिल सावधान रहुक लाए लागे से सपाय बानी ने भले हु नहा धोआ हो ए लोग चो साफ सफाई हो खाद खवई चो हो और घर द्वार चो काम बूता चो हो साफ सफाई चो हो ने नहा ले फिर जोन पीला मनात हुन मन चो साफ सफाई ने हो सियान सजन चो बोलो बे सपाय बानी चो साफ सफाई संगा तोर आमी बहिन मन चो पहिल जिम्मेदारी है आय कसन और एक खूबे जरूरी तीज बले आए आम के एक ध्यान ची देव कलाए पड़े दे ए सपाय तीज मन के आए कसन। और बहिन मन एबे जो समय ने आमी सपाय काम बूता के करूँ से जिम्मेदार आसू ने घर चो बूता बाहर चो बूता और दखा बाहरे बले जाऊन भाती आमी काम करूँ से ने काम करूँ से काई बले काम बूता के करूँ से फिर हमी घर एवं से और काम बूता मन के करूँ से पीला झीला घर परिवार के संभाल तोर ए सब के तो आमी करूँ से चीने फिर आमी काय काजे साफ सफाई बीती बूता ने पाटकुती रवाता ने। तो बहिन मन अई काजे आम के छुक छुका रतो राय साफ सफाई ने कपड़ा लत्ता ने सब ने आम के छुक छुका रतो राय छुक छुका संगा तो राय घर के बले ने और गोटो खूबे जरूरी तीजा से बहिन मन के आम के नहीं आप लो नग के काटते रहते रहे नहाले फिर नग बाड़ू रली बल्लो ने उनता ने मईल भरी होए देने बूता बहना कर तो बेरा बोले माटी आए कि कहीं मईल आए ही लोग चो बोले मुड़ चो नहाले देहे चो मईल उनता ने भरी होक लाए सके नक ने। और देखा उन्हीं हाथ ले फिर आमी भात खावा तो नक ने जोन मईल रहे से उन आम चो पेट ने जाऊक सके जे चोले आमी बीमार लाए बीमार बाट पड़ुक लाए सकूँ आम के झटके बीमार बाट धरुक लाए सके ने। और देखा अई का जे आम के जो नाम चो न काय उनके खूबे बाड़ूक लाए नी देतो राय बाड़ते गेली बल्लो ने तुरते उनके काटते जातो राय। और दका एक नानी नानी गोट मन के आमी ध्यान देवा बल्लो ने आमचो स्वस्थ रहे दे आमचो शरीर और आमचो जीवना बले नंगत रहे दे ने। और दका भात साग कहीं खातो राय बल्लो ने पहिल आम के काय सुंदर साबुन संगे हाथ के धोतो राय छुकनाय उन चो पाचे पेर खातो राय और ये सब आदत के आमी करवा और आम चो जोन घर मन चो सपाई लोग मन बले आसोत ऐ नंगत आदत मन के उन मन बले आप लो जीवना ने धरोत और आमी बले आप लो जीवना ने धरवा ने और एक धरुन भाती चलवा तो ये आम चो जीवना का जी और आम चो स्वास्थ्य का जी खूबे नंगत रहे दे। और गोटोक नंगत गोटा से बहिन मन तका आम चो घर मन ने जोन पीला मन रहे सोत नहीं तो सपाय पीला मन के ये सब नंगत आदत मन के ये सब नंगत गोठ मन के सांग तो राय और काय काज कर तोर होए से काय काज कर लो ने कसन रहे से नंगत रहे से ये सब गोट के आमी उन मन के पीला बेरा ले सांगू रवा सत गोटा से बहिन मन तका आमचो घर मन ने जोन पीला मन रहे सोत नहीं तो सपाय पीला मन के ऐसा

नंगत आदत मन के, ये सब नंगत गोठ मन के सांग तो राय। और काय काज कर तोर होए से, काय काज कर लो ने कसन रहे से, नंगत रहे से, ये सब गोठ के आमी उन मन के पीला बेरा ले सांगू रवा।

0: जो घर द्वार पूरे डोबरा मन रहे से नहीं उन डोबरा मन के आम के माटी ने काय सुंदर पाटून देतो रहे जे चले उन ताने काई जो न मच्छर बल तो बीती हो से उन मन नी जन्म दे ने नी पनप दे और काई बले जोन बीमार बाटा है असनी डोबरा मन ने गंदा पानी मन ने बले उपजू आए ऐ का जाम के उन जो डोबरा मन आए उन मन के पाटून देतो रहे कितरो सुंदर रहे से और जो नाम जो घर मन ने गाय बैल पोस तो ठान रहे से कोठा और छेरी बोकड़ी बांध तो ठान रहे से कुकड़ा सेमड़ा चो ढाप तो ठान और बलू बे जितरो बले आम चो असन कहीं पोसू जानवर पोस तो बीती बले ठान मन रहे से तो उनके बले आम के समया समया ने साफ सफाई करते रहते रहे। तो बहिन मन दखा ये सब जो न आदत मन आए ये मन बरसाची बेरा अपन ने धरू रत रहा है बल तो बीती न हुआ आम चो जीवन भर ये सब आदत मन के संगऊ रत रहा है रोजे दिना आम के छुकना है रत रहा है ने जे चोले आम चो शरीर बले स्वस्थ रहे दे और जीवना बले स्वस्थ रहे दे और आम चो घरे जोन लोग मन आसोत उन सब आए के बले ये आदत मन के आप लोग जीवना मन ने आना बोलून भाती बल तो रहा है ने दखा ये काय सुंदर गोट बात मन तो होली मानतर और भले झाला बीती नगत नगत गोठ मना से उन गोठ मन के बले सुनुता बहिन मन उन चो पाचे फेर हामी गोठियावा।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
4: सुबेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकिता।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो बहिन मन जसन की मैं साफ सफाई बीती

0: और एथाने जोन भागधरलो लोगा थुनमनाथ ससांग कुमार ठाकुर विद्याधर पांडे विजय लक्ष्मी दानी लक्ष्मी मंडल और सरस्वती रायकवार और ये जो नाटक आए एक आमचो लगे अमरासोत बलबीर सिंह कच्छ। तो बहिन मन बेरा नी करू गोट गोट ने पहले नाटक के सुनुता उनचो पाचे फेरामी गोठियावा।
1: सोमारी ए सोमारी कहाँ गेलीस रे कसन करी काय कोनी नी हात काय नुक कहाँ गेला सपाय पाए धोए देता पाए की तो धोले आले ताई भीतर ओलून दखें देता
2: उगारा बेटा उगारा उगारा उगारा उगारा उगारा बेटा ये भी तुझे बाबा ये दे इलाज आले तू के कहाँ बल दखाओ कुने उन्दे उगारा ये दे तू अमर ला ये अमर ला सो
1: मैं तो अमर ले मांतर ये काय होली गुरुक शांति के आजी स्कूल बले नहीं गेली ने
3: आले उड़ाऊं दे इस नीरी आया काय के
1: आले कुछ कुछ उन दख आले हाथ के दखाओ ओहो ये तो एक दाएं तपून गेली से
2: कपार के बले थी उन दखा हो एक के हार लक लक कुन गेली से उन्हीं ने तो मैं बेड़ा बाटे ये उक नहीं सकली
3: पर ले होली हो हम चित्र सुंदर बेटी कसन होली से सीत बोले लागे से बोले कसन करवाए दाए
1: थेप थेप थेप मैं जाए से बुटकी दीदी लगे अले इधर दाए ले जाओ रतीस की नहीं वो गाय होन भांति बसुन दे लीसीस
3: हे आया रिक पानी दे इस नीरी
2: पानी हाँ ये दे बेटा ये बे दे इसी पानी ये दे हाँ ये दे पियो उखड़ा लो पानी आए ठीक सितार करूँ पियो आए अल्पियो डकलास मैं हाक देव गेले पीला लगे कौन रहता तुम्ही एबे इलास आले जहा और हाक दिनाना तो बुट की दीदी के
1: मैं जाए से मैं झप के आए दें अले जाए से मैं दीदी ए बुट की दीदी अरे कहाँ आसीस
4: काय होली बाबू खुब्बे हर बार होली सीस
1: ए दीदी आम चुनुनी शांति के खूबे जरचे गाली से
4: हाँ।
1: बिहाने मैं गेले बेड़ा घाई
4: हाँ।
1: रात इतले खिंडिक खिंडिक दे तपूर है और बिहाने तो लेकी एक के हार बाय बिकाल होली मने आले दीदी तू तो पारा चुमितानी नास दंडिक महा जो लेकी के दखुन दक पाछे फिर कहाँ आए अस्पताल बलने वा
4: आले बिथे भाई बाबू मैं एब्बे दे तो काजी दवाई के धरे से एक के एब्बे खुआन देवा ए बाबू नोनी के काय खिंडे का दक सीत बल लागे से
1: ओ दीदी सीत बल लागे से मने आले दीदी तू बस साइकिल ने झप के जाऊं दीदी
4: आले जो जो जो जो झट के जो मैं बस से आए
1: ओ
4: शांति कसन लागे से नोनी
3: सीत लागे से आता
4: आले एबे काजे नहीं ए दवाई के खाऊ रहा है और तुम ही नहीं दोनों बाले मनुष बिल्कुल चिंता नहीं करा नोनी के जर संगे संगे सीत बल लागे से ये नहीं मलेरिया जर बल हो सके एके नेउक लागे दे कहाँ बल ले जाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने हुन थाने खून जांच करावा तेबे आम के पता चले दे कि ये जर मलेरिया जर आए कि नहीं समझ ला
2: समझ लो दीदी समझ लो कसने कर
4: आले शुक्र बाबू
1: कसन दीदी
4: केंडे घर ले बहारिया तो नी कर तुई
1: हसन
4: ए नोनी के नेवा तो नेवा ए जो चिंता नी करा मानता रे बार तो दख तू जो दुआर बाटे कसन होली से
1: उनके फिर काय के दखें देता दीदी रोजे तो दखें से ची
4: काय के दखें दे तू चो दुआर के तो दख और काय के दख से ता
1: हो दुआर के दखे से काय अले रोजे दखे से दुआर के और फिर काय के दखें देता
4: ओ होरे भकुआ मानी दख तू चो दुआरे ये लगे खोदरा महा हुन लगे डोबरा महा हुन बाटे दख तू चो कोठा ले निकर तो चिखल पानी हुत्ता रूंडा होली से पानी निकर तो लग काजे कोनी लगे बाट नहीं दखा दे

0: देहे के चाब लो ने जानू मलेरिया जर होय से मने समझ ली सुकरु।
1: अब्बा ए छुकचुका ठान संगा तोर इतरो मान और ए छुकचुका ठान नीरलो ने आम के इतरो नुकसान आए और ए जर गुंडी चाबलो ने होय से

0: जुहार आता,
1: जुहार।
0: काय होली आता?
1: काही नाही होय जाननो नी, इस्कूल ले आईसी।
0: हां,
1: बेमार रहीस नो नी, एबे कसन लागे से?
0: अच्छा लागे से आता,
1: अच्छा होलीस ने?
0: नंगत होले काय तेबे तो स्कूल जाऊ रहे, घर जाए से दा
1: देखे से जानू नोनी। ए नोनी,
0: हाँ,
1: तुचो घर लगे तुचो बाबा चुक चुका कर लो कसन?
0: हाँ आता, पानी एबे कोनी ची लगनी थे बे, घर ले द्वार तक सब पाए बाटे चुक चुका बना लो से बाबा। खत खोदरा तो खूब बेलाफी आसे।
1: हाँ
0: हाँ, और कोठा बोले नहीं खिंडी लाफी ची बना लो से, एबे दख्तो के बोले सुंदर दखा दे ऐसे आता।
1: हो नोनी, ए जसन हम चो देहे पाए के छुक छुक का संगाओ से कसन?
0: हाँ हाँ,
1: दातुन पतर नहा तोर खोर तोर उसने घर द्वार के बोले नंगत संगा तो राय काय। आले जा भी नोनी।
0: हाँ,
1: घर बैठ जा। हाँ, और घरे बल सांग आए मैं सांज बेरा तुम चो घर बाटे आए दे।
0: हाँ,
1: गोटोक सोर चो गोट के सांग तो काजे।
0: आले सांगुन दे इंदे आता, सांगुन दे इंदे।
1: आल जाते भी नोनी।
0: हाँ
1: जाए।
0: हाँ, ये आस्ते भी हैं।
1: हाँ, धीरे धीरे जा।
0: हाँ।

0: बाबू सुकरु, ए सुकरु, कहाँ गेला से गोटक दखा नहीं देत?
1: सुकरु, ए सुकरु,
2: हाँ हाँ, आसू आसू, घरे आसू, अली आई आई आई, ए सोमारी,
3: हाय आई हो,
2: हाँ दे बुट की दीदी अमरली, देख लीस,
3: आ दीदी,
2: आओ दीदी आओ आओ, आओ
0: ऐसे का, तुम ची घर तो ऐसे,
2: ए कोतवाल दादा,
1: हाँ,
2: ए बाटे कहाँ बोलसीस ना तू?
1: यही बाटे आ मीता ने दीदी संग बोलू से ना
2: आले आओ आओ आओ आलो बसा बसा
1: हाँ हाँ
3: आले या बसा ये को तो आल दादा ये दे बाट बसा ये दे लग बसा ये लग बसा
1: आले ये दे ये दे हाँ बसे ने
2: आले दीदी आले सांग कसने तो होली
3: होन तो सांग दे ची मान तर बूट की दीदी तू ही भल्ले काम कर लीज दीदी आम चो नोनी तू चो लागुन झप की उजर ली दीदी ये बे फिर काय सुंदर साइकिल चेगुन स्कूल बोले जाय सी
0: हो हो सोमारी हुनके तो भेटू रहे काय आर सांगुन रहे एन दे बोलून तुम चो घरे
3: सांगली जानू दीदी आले बसा मैं खिंडिक चाहा मंडाए दे आले बसा कतो आल दादा चाहा बल पीऊन जहा से
0: चाहा चाही रहो काय सोमारी एबे मैं गोटोक सोर चो गोट सांग तो काजी ले से
3: हाँ
0: हुनके सुनाता
2: आले दीदी सांग काय गोठाए जाले
0: हाँ जाले तेबे सुना हुन गोटाए सुकरु फेर छुक छुका ठान चो गोट दक मैं तू के बल तो के तुई तू चो घर के दुआर के बाड़ी खिड़ी के बले काय रसिया जतना लिस घर छुक छुका बना लिस छुक छुका हो तो के घर बले सुंदर होली दुआर बले सुंदर होली कसन सुंदर दखा दे से कि नहीं
2: हुन तो दखा दे से चिकाए
0: हाँ मानतर दखा बड़े बिहाने आमी आम चो टोंड का जे दातुन करूं से देहे का जे नहाऊं से देहे चो साफ सफाई का जे झाड़ा पिसाब बले जाऊं से आए कसन
3: हुन तो सत्य गोठाई दीदी
0: मानतर दखा आमी झाड़ा कोंडी के धरुन फाती रान रेटे नहाले बेड़ा रेटे नहाले कहाँ तरई रेटे बले जाऊं से
3: हो
0: ये गोट बले खिंडी अड़नाप गोठा
2: मानतर दीदी उन तो हमें पुरकति बेरा ले जाऊं से
1: नहीं ना आगज गोट तो अलगे रहे असे ना ना सुकरु देश बदल ली राज बदल ली चतुर हो तो राय जसन जसन युग बदले से उसने चल तो राय बोलो ने असन आय की पुरकति बेरा आम तो सियान मन लेंगड़ाई नहीं रला अनपढ़ रला होती ये बे समय संगे संगे आमे धोती पिंदू झंगा मारू और पोड़कलू की सीखलू की नहीं
2: सत्य
1: हुसने आम के ये अड़रा चलन बाहरे बाटे झाड़ा जातो के बले बदलुक लागे दे
2: नहीं नहीं नहीं सत्य है
3: उन तो आए ची दादा के बे नहीं ये झाड़ा कोंडी के धर उन भाती खुब्बे दाएं ले टाकू को लागू से
1: हो
3: किदल दाएं लोग गुज्जे बोलूं दखते रहूं सी हाँ मन मन
2: जाले मैं बोले नहीं दादा
1: हाँ
2: ये गोट के खिंडी खिंडी समझे से
1: हाँ
2: बिहार

0: हो कि सांझ बेरा नाले राति बेरा उथा पड़े झाड़ा भावलो ने केबे केबे खूबे चिपा होन जाए से और एबे आगे चुमा रान बलबले नहीं आए धीरे धीरे टंग टंगा होते जाए से सफाई बाटे
1: हो ना सुकरू तेबे तो बोलतर हो से घरे झाड़ा खोली रलो सफाई अन्नाप चिपा ले मुक्ति बेटी बहिन मन घर ले सांझ बेरा राति बेरा अंधार ने कहाँ जाते रहते यही काजे सफाई घरे झाड़ा खोली हो तोर खूब भी जरूरी आए ना
0: जले तुम्हें गोर तो सोरा ने सत्य बल लाज दादा
1: हो
0: ना अले दीदी मैं असन विचार के भी नहीं करूँ रहे दीदी
2: गोटो गोट तू चो हुन दिन चो मुके सुरता ये ऐसी दीदी
3: काय गोट रही सो मारी
2: काय सांगा सी दीदी हुन तू बलते रही नहीं दीदी हाँ। गुलाई घिन घिना ठान मन ने मच्छी मन बोसुन पाछे घर येऊन खातो जमक मन ने बोले बोसुआत ये चो बोले आम के नुकसान हो से बोलून मैं विचार करती रही दीदी
3: हूं तो सत्य गोटाय यही काजे एवे आम के सफाई लोग के झाड़ा खोली बना तो गोट के सांग तो राय
2: हाँ।
3: ओ झाड़ा खोली हो दे घर द्वार संगे संगे पारा आरु गांव सफाई छुक छुका रह दे कितरो नंगत गोट हो दे
1: सत्य नहीं सफाई बाटे छुक छुका रलो ने को कई बीमारी सीमारी बोले जाऊ टुक नहीं सके दे।
0: बिल्कुल सोला ना सत्य गोड़ बोल लाज दादा तुम्ही
1: हो
0: मैं काल के ची नहीं जाऊं तुरते आप लोग घरे झाड़ा खोली बना तो काजे मिस्त्री मन के तैयार दे उबे नंगत कर लाज दीदी आम के सुतुर चुगोट के सांग लास
2: ये कतवाल दादा तुम्ही बोले का ये युवाट काजे का गुलाय गांव के बुले सास
1: हाँ उन्होंने गांव चो भलाई चो गोट काजे सफाई के सांगो के बुले से तुम जो पारा चो मीता नीन बुटकी दीदी आए गुनुक ये चो संगे इले से आले ते भी आमे जाऊं दे सुतुर चो गोट तो सर ली एदा आम के जाऊ पड़े दे जाऊं दीदी जाऊं एदा रामू घर बाट बल जाऊं
2: ये यदे चाह रांद ली दादा यदे बसा बसा खिनिक खिनिक चाह खाऊं जहां से
3: आले जानू दुई पद नगद गोट के गोठियालू सुआद गोट के गोठियालू बाड़ती चो सोर के गोठियालू होली जानू यही आम चुका जी चाहा
4: एदे बनली चाहा आया आ एदे एदे एदे चाहा खाऊं जहा नहीं नहीं नहीं बोल लो थाने नी जहा
3: आले बोल सा जाले
4: आले आले आले
3: आले
4: आले आले पीऊं दिया खिंडी कसन
3: आले नोनी बन आली सी जल मीठा चाहा खिंडी खाऊं दखूं दे
0: आले कोतवाल दादा चाहा तो संगे संगे नहीं मुझे कुछ ठसा के बोले सुना
1: आले दे भी सुना आले
2: सुना
0: आम के तुम्ही सांगला सुतुर्च गोट होली आमके तुम्ही सांगला सुतुर्च गोट होली एदा आमी बनाऊं दे घर ने झाड़ा खोली

0: तो बहिन मन, एबे हम ये काय सुंदर नाटक के सुनलू ने। और ये नाटक चो नाव रहे छुक छुका। सत्य गोटाए बहिन मन, ए नाटक ने जोन जोन गोठ मन के बलते रहो हुन खूबे नंगत और सत्य गोटाए ने। तो ये जो नाटक रहे एक आम चो लगे अमराला उन्मनाद बलबीर सिंह कच्छ। और ए नाटक ने भाग धरलो लोगात शशांक कुमार ठाकुर, विद्याधर पांडे, विजय लक्ष्मी दानी, लक्ष्मी मंडल और सरस्वती रायकवार। और ए नाटक के लिखला सोत श्रीमती यामिनी पांडे। तो बहिन मन, कितरो सुंदर ए नाटक के तो सुन लूने। और ए नाटक के सुनुन बाती आम के बले शिक्षा और सीख मिरली। तो असनी गोटोक असनी झाला बीती और बले नगद गोठमना से उन गोठमन के बले सुनुता उन चौपाचे फेरा में गोठियावा।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाएं रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। एथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222

0: फोनिन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: हाँ तो बहिन मन एकाए सुंदर नगद झाला बीती गोठ मन के तो सुन लू और कितरो सुंदर सुंदर ज्ञान ध्यान बीती बल गोट बात मन होली मंतर और बले गोटोक नगद गोठा से बहिन मन उनके मैं बलुक लाए चाहे से उन्हें की दखा बरसा बेरा चो तो समय आए ने पानी बरसा चो मूर होली से और पानी बरसा होए से बले तो असन बेरा का आए आम के घर चो तो साफ सफाई संगातोर ची आए ने सौ तो जोन ठान रहे से हम चो उनके बले आम चो जो ओसना डसना आए उनके बले छुक छुका संगातो रहे और देखा बरसा पानी चो समिया बेरा कसन होए से कि जोन सांप ढेंडू आत कीड़ा माकड़ा आत उन मन घर भीतरे बले ओस होत और देखा ऐसन बेरा आमी सौ रलो ने फिर आम के खूबे परेशानी होतर बले हौक लाए सके से तो ऐ का जे आम के काय करतो रहे कि मच्छरदानी टांगुन बाती सौलो ने नंगत रहे दे असन ने काय आमी कीड़ा माकड़ा सांप ढेंडू ले बले बाचुक लाए सकूँ दे और जो न मच्छर रस होत उन मन ले बले बाचूँ दे। तो बहिन मन अदाय मचो जातो समय होए से असनी मैं फिर के भई तुम चो संगे भेंट हौक लाए आए दे तुम्हें सपाए बहिन मन नंगत रहा स्वस्थ रहा हरि कुदिम ने रहा और खूबे खूबे बाढ़ती उन्नति करा बहिन मन आले विदा धरे से घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सपाए आया मन दीदी मन बहिन मन और संगजौरिया संगवारी मन के जादोपुरे में तुम्हें सपाए चो तारा करें से जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक

अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरल

प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरल

0: सामयिकी बेड़ाखाड़ा चगोट हल्बी बोली में।
1: खेतिहार भाई बहन मन, असन तो सोयाबीन चुनाव के आमी सफाय सुन लो से और आमी जानू से कि एचो कमानी बोले किसान भाई बहन मन खूबे परसोत और आमचो देश ने तो आमी दखूं से और जानू से कि दिनों दिन एचो कमानी बढ़ते जाए से। सोयाबीन ने देह पाए का जे अधिक प्रोटीन तत्व मिरे से और ये देह ने बाढ़तो चर्बी जे के कोलेस्ट्रॉल बलतो रह से एक नियंत्रित करे से बलों ने कम करे से। सोयाबीन कमानी का जे शुष्क गर्म बलों ने खिंडिक सूखा जलवायु रतो जरूरी आए और 60 ले 65 सेंटीमीटर वर्षा जोन क्षेत्र मन ने हो से उन क्षेत्र मन का जे एचो कमानी निको हो से। सोयाबीन चो कमानी काजे जल निकासी चो अच्छा उवाड बीती डोमट माटी निको रहे से। बुनतो पहिल बेड़ा के अच्छा खाप जोत करून पाटा चलाउन भूई के समतुल करतो रहे। भूई ने 1000 लीटर पतंजलि संजीवक खत के पानी ने मिसान बुनतो पहिल 2.5 एकड़ हिसाब ले चीजतो रहे। इतरो करून एक हफ्ता पाछे फिर हारक हुनके खाप जोत करून बराबर बनातो रहे। हुंचो पाछे हमके हुता फिर बीजा के मंडातो रहे। जोन किसान भाई बहन मान सोयाबीन चो कमानी कर सोच जाले 2.5 एकड़ भूई काजे 25 किलो बीजा के हुन मन लगा सकोत। बीजा के लेन वार 3 ले 4 सेंटीमीटर गड़िया ने गड़ियातो रहे और बूटा ले बूटा चो झुंदुरिया आए हुन के आम के 30 सेंटीमीटर चो हिसाब ले राखतो रहे। तो दादा दीदी मन कहीं कमानी हो जैसन कि हमें जानू से हुंचो कमानी चो पहिल हमके किस्म और हुंचो ले मिलतोर उपज चो ध्यान के करून हुन कमानी के बीजा के हमके मन करतो रहे और हुन हिसाब ले हुंचो कमानी करतो रहे। सोयाबीन ने उन्नत किस्म मन ने होइसे सोयाबीन अंकुर दुर्गा अलंकार पी के 262 और पी के 327 ए किस्म मन ले हमके 16 कुंटल तक उपज मिरे से और सोयाबीन कमानी ने संजीवनी खत और बायोगैस स्लरी के बीजा बुनलो पहिल जो नाय पहिल हार ने आम के 1500 लीटर के उता देतो रहे। फिर दूसर हार ने हुने वो खत के 1000 लीटर खत के फिर हम के उता लगातो रहे। दादा दीदी मन सोयाबीन ने फूल निसकतो पहिल पानी देतोर खूबे जरूरी है। असन ने फूल ने बीजा जो बाली मन रहे से हुन झपके निसके से बुनलो 20 ले 25 दिन पाछे लाटा बूटा जेके आमी खरपतवार बले बोलू से हुनके हमके जीक तो रहे। सोयाबीन कमानी ने जुगे करून तना छेदक कीड़ी अरु इल्ली मन होइसे। ए मन के मरलातो काजे करंजादी नावचो ओखत के 40 लीटर पानी ने घोरून चीज तो रहे। असने रोग मन ने जुगे करून सफेद माछी रोग होइसे। सफेद माछी रोग ले आम के बूटा के बचातो काजे 5 लीटर निम्बादी ओखत ने 100 मिलीलीटर अभिमन्यु ओखत के 40 लीटर पानी ने मिसान घोरतो रहे और दुहार करूँ छींचतो रहे। सोयाबीन फसल ने पाना चो प्योरातो बेरा आम के जानतो रहे कि हुन फसल एदाय पाकुन तैयार होली से और आम के हुनके कटानी करतो रहे। तो पाना सूखते सूखते पहिल आम के हुनके कटानी करून एक हफ्ता काजे थेवातो रहे बोलों ने खिंडिक सुखातो रहे हुन फर के और पाछे हुनके आम के मिंडतो रहे और हुनके मिंडून दाना और हुनचो जोन कुधूर जेके भूसा बल बलतो रह से हुन भूसा के अलगातो रहे। तो किसान भाई बहन मन असन सांगलो हिसाब ले तुम्हें आप लोग सोयाबीन चो कमानी के करलास डाले 2.5 एकड़ ने तुमके 16 क्विंटल बीजा और 25 क्विंटल भूसा मिरे से और इतरो लेन तुम्हें जाना कि आम के बीजा संगे संगे हुन भूसा लेवल लाभ मिरे से तो असन हिसाब ले तुमके अधिक ले अधिक लाभ बल मिरुक सके।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल, रिमझिम सुहावने मौसम में बहती हवा की ठंडी बयार सी सुरीले गीत भीगे भीगे मौसम को और भी खुशनुमा बना देती है। सुहाने मौसम का आनंद लीजिए आपकी रेडियो मित्र मर्सी स्वर्णा के साथ। स्वीकारे मेरा स्नेहिल अभिवादन आप सभी श्रोताओं को। आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन में स्वागत अभिनंदन।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे 1942 ए लव स्टोरी से, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाजों में। बोल जावेद अख्तर के थे, संगीत आर डी बर्मन का था। इस गीत को सुनना चाहा था आप सब।

0: यश, गुमला से एसएम जावेद, शबुकता अंजुम, जेल रोड रायगढ़ से आप हैं भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, किया साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, श्री रोडकेश्वर श्रोता संघ छत्रपति साहू नगर हिंगोली के श्रोता हैं रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिंकू, रमाताई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूसा और गौतम इंगोले, अशोकनगर बसमत से हमें पत्र भेजा है पार्वती सखाराम, दीपालू राजू, रोहित सोनू मोनू ठोके ने, सांकरा सोमानी से आप हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतीन, दिवेंद्र, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय और रुद्रांश प्रताप साहू, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या, प्रतीक और मानस साहू, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के सोता है अभिजीत गवनकर, सरिता प्रिंस एकांश, वैशाली सेले, श्वेता सुमित, ध्वनि गवनकर, साथ ही आप हैं बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता गवनकर, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, रायपुर के श्रोता हैं छनूलाल, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा के श्रोता हैं अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जिया उल हक, मोहम्मद उमर डावर, नारायण खर्चे, ललिता परी, गणेश, कार्तिक, देवकी, स्वाति, प्रयाग, मालती, खुशी और वाणी, आप है चांदूर बिस्वा के श्रोता, मेन रोड श्रीतामणि से आप हैं अख्तर हुसैन राजा, सहनवाज, रहीमा, हिना, मास्टर गोलू और अकरम भाईजान, बागपत उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, धर्मनगरी संबलपुर से आप हैं पलटूराम कोठारे, पूर्णिमा, चैतन्य और मनीषा।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान, बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: अगले गीत की फरमाइश लिख भेजी है आपने चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, जाखोद राजस्थान से आप हैं शंभु दयाल खटक, विमला देवी पूजा, फाजिलका पंजाब से आप हैं सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, कस्बा नोहर से आप हैं नरेंद्र, मनोज और हिमांशु सुथार, उत्तराखंड के श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, रानीगांव नगरी से खिलेश्वर कुमार, खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल, इंद्रानी, रोहन और भरोस साहू, रतनपुर झीरिया के श्रोता हैं भागीरथी नायक, जितेंद्र सुभाष, रविंद्र शिवानी, अश्वनी हर्षराज, अरविंद आदित्य, गुनगुन और उनके परिवार के सभी सदस्य, गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार, रेखा पारस तपस्या और करिश्मा कामले, लातूर हून के श्रोता हैं शेख उस्मान शेख फौजी, दस्तगीर शाकिर, बाबा शेख, सानिया शकील, फैजनबी, सायरा बानो, इस्लामवी, बिस्लामी शेख, गदर आनी, नीलोफर शेख, गोला बाजार बक्सर के श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभय परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित, सरहानपुर से आप हैं सुरेश नारंग और आशु नारंग, परेम सिंह जौड़ा, मनमीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन,

टेकम दमन और अभिजात, आप हैं भटिंडा के श्रोता। पाठर कावड़ा से आप हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री, बल्लारशा, सूरज जी, प्राची लोढ़े और एकलव्य लोढ़े। खंडवा के श्रोता हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। और यहीं से आप हैं मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब हसनैन, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। और यहीं से आप हैं अशोक कुमार वाधे, वंदना, भूपेंद्र झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा। करनाल के श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। साथ ही आप हैं जीएस राम गढ़िया। जलाना जाफराबाद से आप हैं श्री सुधाकर, प्रशांत जुगताई, साक्षिताई, संचित, प्रथमेश, स्वामी देशमुख, प्रणाली, सानवी देशमुख। परसाटोला अंबागढ़ चौकी से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी, कुमेंद्र, तुसारिणी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं रिजवान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान खान। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू, चिंटू और युग कुमार झेरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है वो कौन थी फिल्म का नगमा आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत मदन मोहन का है।

प्यासा सावन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिख भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, अर्णव सत्यम, आनंद आप हैं झारखंड से, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से, बबलू साहू, जामिन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या ने, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल, नानक चंद्र,

झारखंड से, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामिन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या ने, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल, नानक चंद्र

भंडार सिवनी जिला कोंडा गांव से सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम और मोहम्मद अल्ताफ, साथ ही आप हैं नीलोफर यास्मीन, आप हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिंक और मयंक शर्मा, तेलंगाना निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श और बेगम राबिया शेख, बन बघेरा से आप हैं योगेश, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा, बुजगहन से चिंताराम, श्रीमती नर्बदिया, दिनेश दुलार और उर्वशी साहू, परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा के श्रोता हैं अशोक ग्रोवर, परवीन, परनीत और यहीं से आप हैं निखिल, नीति, महरीन और विक्रमजीत भाटिया, कृष्ण कुमार डाबी, भूपत, राधा देवी, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रागिनी, रेणुका और समस्त यादव परिवार, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्मी मोहिनी, शोहन जोशी, श्रीमती अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला, बानी, लोकेश जोशी, पायल, मुरली छत्री, कविता छत्रीय, मिथिलेश यदु, दशरथ साहू, कुमारी अंकिता, बेबी वैदही, आप हैं कामठी नागपुर महाराष्ट्र से, और शोहन जोशी आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण, आशीष कुमार और अमृता शर्मा, ये श्रोता हैं कामठी नागपुर महाराष्ट्र से, और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं ब्रिजेश, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, छिंदीडीह पुजारीपारा से आप हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन, आशीष और अस्तिका चक्रधारी, वासुदेव बोधबड़े, माधुरी, आकाश कुमार बोधबड़े, अनिता गाठोड़े, रमेश राव और लोकेश गाठोड़े, आप हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र के श्रोता। अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आक्रमण फिल्म से, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने, प्रकाश तिरसुनिया, विकास नैतिक, मुकुल धैर्य, दीवांश आराध्या, आप हैं भानु प्रतापपुर से, बालोद छत्तीसगढ़ से मंतुराम यादव, चित्ररेखा साहिल, शिवम, राकेश पोषण, केशव माधव, रितेश पोषण, नेत्राम, संतुराम और विजय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली के श्रोता हैं बलराम सेन, इंदु, रितिका, पुष्पराज, पोषण, पंचू और भुवनेश्वर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आप हैं आजाद नगर हरिद्वार से, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर से आप हैं कुमारी वंदना मराठा, देविका गणेश दादा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना, मालती चौधरी, प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे, ग्राम मामड़पाल दरभा से आप हैं गणपत बघेल, मनीष और अनंत बघेल, समलीडीह नवापारा से आप हैं राकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, राजकोट से आप हैं रश्मि झरना और भरत कुमार, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं सूरत रमेश साहू, तारा विद्या, जितेन किशन, सुनीता ऋषि, वीरेंद्र नीलकर, चंद्रहास, संजू त्रिलोक साहू और साथी आप हैं मास्टर रंजीत सिंह साहू, यूपी बिहार के श्रोता हैं रोहित सिंह बेटा, पंकज अंगद, आर्यन आदर्श और समस्त यादव परिवार, टैगोर गार्डन।

दिल्ली से आप है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा। आइए सुने आप सभी की चाहत पर ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन का। अगला गीत है साया फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है MM करीम ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, मंदना मयंक और तन्वी गौहर, धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। भाटापारा से आप हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू, चिंटू और युग कुमार झेरिया। झुमरी तलिया से देव इंगोले, छोटू दादा और छकुली इंगोले। दाता घायल सुनीता बाई, सानिका गजानन घायल आप हैं नालेगांव से। नागपुर से आप हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती हर्षल और जानवी रंभाड़े। भाटापाड़ा के ही श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार नवीन और युवराज साहू। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल के श्रोता हैं मिथिलेश, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन। ग्राम खट्टी से आप हैं सुभाष शर्मा, छाया, कुमुदिनी, ओमकार और भीषम दास मानिकपुरी। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। अघनपुर बस्तर धर्मपुरा के श्रोता हैं वनीता नायडू, कृष्णा राव, ईश्वर राव, रोजा देवी, सोम शेखर, अमृता संतोष। धनोरा के श्रोता हैं वी पूनम नायडू, साजन के पुरुषोत्तम, मास्टर शिवांशु, दुर्गेश कुमार, रोशु और अक्षय कुमार, अक्षय अभिषेक नायडू। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम, ज्योति, ओजस्वी, इशिका, तेजल यादव, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास, जयदास, देवेश दास मानिकपुरी। आप हैं ग्राम परसुली, डोंडी लोहरा, बालोद के श्रोता। प्रफुल्ल कुमार बघेल, बबली, लव वैद्य, ललित वैद्य आप हैं कोलद अंतागढ़ के श्रोता। सुनील पाठक, महेंद्र, सुनील पाठक आप हैं जलगांव के श्रोता। गांव नथाना पंजाब से खत लिख भेजा है आपने हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, गगन, सोनी, सीता और गीता ने। और गांधी चौक बाड़मेर से आप हैं बबलेश पवार, डेनी और मास्टर मनीष प्रवार। लीजिए श्रोताओं आपकी पसंद आपकी नजर करते हैं।

इसी गीत की फरमाइश की है आपने ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय, मीनाकारी पुंजराज, आर्यन, आरती, आकर्षण, रिंकी पिंकी, रिक्की रितु, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, डोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम, परमजीत, महासमुंद से वल्ली वल्लाह, फकीर, डब्बू वल्लाह, परमीन, आसमा और बुलंदशहर से आप हैं बदरू वली, फरजू वली, फर्जी अली अंसारी, अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, इंदौर के श्रोता हैं धनेश मटई, राकेश मटई, उमेश, हनी, जिम्मी, अमिता, दियाना और जियांश मटई, बीड शहर से आप हैं प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव और राम रिवास अग्रवाल।

आइए अब सुने कार्यक्रम का आखिरी नगमा खुद्दार फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी, दुविधा नेवादा से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से आप हैं अवधेश, प्रीति और नवनीत रॉय, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी भैया, बिट्टू साजदारानी, हिना कौसर, आप हैं मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर के श्रोता और बेंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार, बेबी तनिष्का, नौबत यादव, आप हैं अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ के श्रोता, गुजरात से आप हैं सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा राठौर, मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं दिलीप मालाकार। योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार, बिरहानपुर खरगोन के श्रोता है तिलोकचंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, अमित, समरराज, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा, भाटापारा से रामकुमार रावत, अमेरिका गणेश, कार्तिक, युवराज, जरूर वरूर महाराज से आप हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे और कार्तिक

0: इस गीत के साथ ही मुझे यानी मर्सी स्वर्णा को कार्यक्रम श्रोता सुमन से दे अनुमति नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। प्रस्तुत है संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines: India and Australia sign landmark deals on uranium supply.

0: and dedicated critical minerals corridor, Australia-India partnership on cyber, critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P.
1: Rao's national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. Monsoon covers entire country, incessant
2: एक साल 12 नाव यानी 12 महीना 30-30 के जोथा यानी महीने के दिन और भिन्ने भिन्ने पाँव यानी अलग अलग दिन मतलब शुरू सीधी ये जनौला ना पूरे एक वर्ष को दर्शाता है।
3: दीदी के गोट के 12वां कड़ी में संघर के
2: हाँ
3: दीदी मनसंग और श्रोता संगवारी मनसंग जुड़े माया के गांठ के भी एक साल पूरा हो गए चंदा।
2: तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट के एक वर्ष की यात्रा पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई।
3: दीदी हो आज सुरता के एक बच्चर के चंदन घोरबो आप मन संग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट के विशेष प्रसारण में।
2: एक वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी की शुभकामनाओं और प्रेरणा से हुआ।
3: और एक बच्चर के ये प्रेरणादायक यात्रा में दीदी मन के आत्मनिर्भरता के कहानी सुने।
2: आरंभ से अब तक दीदी के गोट की ये यात्रा नारायणपुर जिले की इरक भट्टी से लेकर जशपुर के गांव तक मैदानी क्षेत्र से सुदूर वनांचल तक पहुंची है।
3: पीएम आवास योजना में महिला मन के सहभागिता, नई चेतना जेंडर अभियान 4.0, लखपति दीदी ले लेके बैंक सखी के गोट और बायर सेलर मीट ले लेके नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी और पशु सखी दीदी मन के गोट ये सब ला सुने गोई।
2: समूह से पंचायत प्रतिनिधि तक का सफर, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड व वित्तीय साक्षरता, 36 कला ब्रांड विषयों पर भी जानकारी मिली है।
3: और सुरता के चंदन घोरथन तक गर्भ के सुगंध ले महमावत महिला सशक्तिकरण के अनगिनती कहानी और अनगिनती बदलाव के अनगिनती मोती में से चमकत मोती मन ले बने माला एक साल पाथन चंदा।
2: हाँ, और इस माला की मोतियों को फेरते हैं तो पाते हैं कि दीदी के गोट कार्यक्रम ने इस एक साल में दीदियों की आवाज को एक मंच दिया है। हाँ, दीदियों की हर एक कहानी में ध्वनित होता है बिहान से जुड़कर बढ़ें, चलें और नई राह गढ़ें। बिहान हर कदम आपके साथ है
3: और दीदी मनला एक नवा पहचान मिली, सुनैया मन के आसला विश्वास के नवा उड़ान मिली और आज पूरा एक बच्चर के यात्रा में दीदी के गोट कार्यक्रम सुन के सार सार निमारे दीदी मंजूरियाए हमें।
2: सुरु दीदी आज इतनी सारी दीदियाँ एक साथ की सफलता की कहानी हम सुनने वाले हैं
3: तो आओ इखर मन ले मिलथन।
4: जय बिहान दीदी हो। जय बिहान दीदी।
5: मोर नाम गीता वैष्णव जिला बेमेतरा।
6: मोर नाम शीला मानेपुरी जिला बेमेतरा।
7: मोर नाम श्रीमती रुक्मणी साहू जिला राजनांदगांव।
8: मोर नाम ज्ञानेश्वरी निसाज जिला राजनांदगांव।
9: मेरा नाम कविता अंगनपल्ली जिला बीजापुर।
10: मेरा नाम सुनीता पुजारी जिला बीजापुर।
3: चंदा अब ये दीदी बीजापुर ले सुनीता दीदी और कविता दीदी घला आए हैं। दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
11: मेरा नाम है श्रीमती सुनीता पुजारी, मैं ग्राम पंचायत चेरपाल नियत नेलेनार से हूँ जिला बीजापुर। मेरा समूह का नाम है सरस्वती स्व सहायता समूह, उसमें मैं सचिव हूँ। मेरा ग्राम संगठन का नाम है श्री कृष्ण ग्राम संगठन, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, फिर मैं समूह में जुड़ी। जुड़ने के बाद फिर मुझे पता चला कि समूह से ऋण मिलता है। मैं समूह से फिर बैंक लिंक के राशि निकाली और मेरा पहले से छोटा सा दुकान था तो फिर मैं बैंक से ऋण ली और मेरा दुकान को और बढ़ाई। जब दुकान बड़ा की तो उससे जो राशि मिलता था मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखवाई करती हूँ और मेरा घर चलाती हूँ और मेरा अच्छा से चल रहा मेरा जीवन। एक एपिसोड सुने हैं दीदी के गोट में एपीओ के बारे में तो प्रेरणा मिली। एपीओ का गठन हुआ है 2025 में तो उसमें 600 दीदी लोग जुड़े हैं। उसमें मुझे बेचने में दिक्कत होता था, अच्छे दाम आने से बेचूंगी बोल के रखती तो खराब भी होता था। जब एपीओ आया तो मैं अभी अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। बिहान से जुड़ के मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया।

0: मैं अभी लखपति दीदी के श्रेणी में हूँ। मैं इतने लोगों के सामने मैं अपनी सफलता कहानी को रख रही हूँ।
1: दीदी के गोठ की ऐसी कौन सी विशेष अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
0: चंदा दीदी,
1: हाँ?
0: जो गाना गाते ना, हमें बहुत अच्छा लगा।

0: मैं अभी लखपति दीदी के श्रेणी में हूँ। मैं इतने लोगों के सामने मैं अपनी सफलता कहानी को रख रही हूँ।
1: दीदी के गोठ की ऐसी कौन सी विशेष अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?

0: सुने चंदा?
1: हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी।
2: हम वाला अच्छा लगी से दीदी।
1: रुक्मणी दीदी, आप दीदी के गोट की एक वर्ष की सशक्त और सफल यात्रा की साक्षी हैं, है ना? आप लगातार सुन रही हैं, तो इस कार्यक्रम से आपका क्या अनुभव रहा? आप मन अपन बारे में बताते हैं।
3: मोर गाँव के नाम सुकुल देहान, मोर समूह के नाम है माँ बम्बलेश्वरी, मैं अध्यक्ष हूँ। CSC सेंटर चलाती हूँ दीदी, उसमें आधार से पैसा वगैरह निकालती हूँ, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरती हूँ, फिर उसी में फैंसी डाली हूँ, ग्रामीण वितरक गैस का, बीमा सखी का भी काम करती हूँ, 4-5 आजीव का कर लेती हूँ मैं। दीदी के गोट में 10वां एपिसोड सुनने के बाद हमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी मिला, संगठन में ग्राम संगठन में अनुभव साझा कर पाए, OTP वगैरह आते हैं तो OTP नहीं बताना है। दीदी के गोट हम ग्राम संगठन में सुने तो हमला बहुत अच्छा लगी से, प्रेरणा मिली से, हमला एक मंच मिली से जहाँ से हम अपन कहानी ला साझा कर सकथन, तो एक लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चंदा?
1: हाँ दीदी।
0: अभी ये दीदी मन के सब अनुभव सुने हैं,
1: ऐसा लगता है सुरुज दीदी कि इनकी कहानी सुन के भी हमारी जो दूसरी दीदियाँ हैं
0: वो मन प्रेरणा
1: लेंगी।
0: कविता दीदी, आप ये कार्यक्रम ना जब सुने हो तो ये कार्यक्रम के बारे में आप मन के पहली विचार का बनी?
4: मेरा गांव का नाम बोरजे है, मेरा समूह का नाम है चंद्रका स्व सहायता समूह, मेरा ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति। मैं समूह में जुड़ के बैंक लिंकेज राशि से बकरी पालन कर रही हूँ। मेरे पास 30 से 40 बकरियाँ हैं जिससे मैं सालाना इनकम 1,30,000 तक कमाती हूँ।
1: यानी आप तो लखपति दीदी भी
4: हो, लखपति है ना? दीदी में दीदी के गोट कार्यक्रम में पशु सखी कृषि सखी के बारे में भी सुनी हूँ, जिससे अनुभव यही मिला है कि और बेहतरीन बन सके हम लोग, बिहान से जुड़ के आजीविका को बढ़ाए, अच्छे से पशुपालन करने की प्रेरणा मिली हमें। जब से बिहान आया है हम नियत नल्ला नार से, जीवन ही बदल गया है।
1: क्या बात,
4: हमारे गांव परिवार की भी सब में सुधार आया है।
0: सुने चंदा दीदी मन के कहानी? अब यदि गीता दीदी के पारी है, दीदी आप जैसे दीदी के गोट सुने हो, आपके विचार कोनो बदलाव आए बताते हो?
5: मोर गांव है ग्राम पंचायत झालम, मोर सम्मुख नाम है नर्मदा माता, जिला बेमेतर है। दीदी के गोट ला सरगुजा जिला से सुने रहे पहली।
1: अच्छा,
5: तो वहाँ से मोर मन में ना विचार भी जब अच्छा लगी से, मैं सोचे कम खर्चा से पापड़ बना लेता हूँ और बड़ी बिजौरी बना लेता हूँ, तो मैं वो चालू करे। मार्च में कवर्धा में 20,000 के बेचे हूँ और रायगढ़ में 40-45,000 के बेचे हैं, रायपुर भी आ रहे हैं बेचे बार पापा। तो अच्छा बिकी से यहाँ तो मोर लड़कल के वही पैसा के मैं फीस पटाए स्कूल के, और कुछ पैसा मैं घर बनाए हूँ, टाइल्स लगाए ओमा लगाए हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम जेंडर वाले माँ हमन सुने हैं, तो ओमा हमार मन के जानकारी बढ़ी से नया चेतना में, तो पति दुख देते, सास दुख देते, जहाँ हमार GRC सेंटर है वहाँ पूछे बड़ आते सुन के, हमन गाँव में जैसे बेटी बेटा में भेदभाव रही थे, गाँव में अगर बाद विवाद है, एक पति पत्नी में है, सास बहू में झगड़ा है, कि मारपीट करते, तो वो दोनों ला समझाता ना, नहीं समझे तो फिर सखी सेंटर में भेजता ना। एक काम ला करे हूँ, समूह में जुड़े हूँ, तभी तो आज रेडियो में बोले के मौका भी मिली, महूल अपन कहानी रखे के मौका मिली से। एक मुख्यमंत्री जिला और पंचायत मंत्री जिला धन्यवाद कहा थी।
1: ज्ञानेश्वरी दीदी, दीदी के गोट की ऐसी कौन सी विशेष कहानी है या ऐसा कौन सा अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
4: मैं ग्राम मोखला के रवैया हरो, मोर समूह के नाम है प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह, जेमे दीदी मैं बुक पर के काम करता हूँ। दीदी के गोट में मैं यहाँ 3रा एपिसोड सुने, जेमे अनिता कश्यप दीदी है, है ना, ओहा जो है कोसा के साड़ी बनाते, ओहा हर सरस मेला में ले जाते और अपन कोसा के साड़ी ला बेचते, वही सरस मेला में मैं भी अपन गढ़ कलेवा के जो है स्टॉल लगा थू, तब दीदी सन में मुलाकात बहुत हो रही से। दीदी के गोट में सुने तो वहाँ से प्रेरणा लेके ग्राम संगठन से

0: यहाँ 3 लाख के लोन ले और वहाँ के साथ सजावट करे। दीदी मैं यहाँ राजनांदगांव में गढ़ कलेवा के नाम से कैंटिंग चलाता हूँ, ठेठी खुरमी अरसा ये सब चीज बनाता हूँ। और अभी वहाँ पे मोर पर डे 10 से 15 हजार की डेली के कमाई हुआ थी। मोर साथ में 10 से 15 महिला और जुड़े है जेकर यहाँ से वो अच्छा से आजीविका चला थे। दीदी के गोट के हर एपिसोड में दीदी मन पूछे रहे थे सवाल है ना, तो वो हुए में मोर एक सवार रही से वे जो जवाब देव ना वही में मोला जवाब मिल गए। ये बात मोला बहुत अच्छा लगी से दीदी के गोट।
1: अच्छा, मतलब आप मतलब ये अच्छा लगी कि आप मन के सवाल के जवाब मिल गए। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
2: असीला दीदी, अब आप अपन कहानी ला बताते हो।
3: मैं बाबा घटोली से आया हूँ, जिला बेमेतरा से। समूह के नाम है माँ महामाया। मैं बीओ की भी काम करता हूँ, जो मैं सची हूँ।
1: दीदी के गोट सुनती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आया?
3: पहला विचार आया इसकी मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अचार पापड़ तो मैं बेचत रहे हैं, लेकिन मोला वहाँ तक कैसे जाना है, ऐसे ही कि मैं दीदी के गोट में सुन के मोला प्रेरित हुई से। तो संकुल में मैं मैडम माला बोले, मैडम मोला कोई आजीविका काम से मोला पैसा चाहिए, ऐसे ही की बोले हूँ। तो मैडम हम दिलाई से, तो फिर मैं अचार पापड़ ला बनाया हूँ। तो गांव-गांव में बेचा था, स्कूल में भी दे देता हूँ, लेकिन मोला आगे और बढ़ना है और अच्छा क्वालिटी से बेचा हुआ, ऐसे की मोर विचार है।
1: क्या बात है, आपके आचार और विचार बहुत अच्छा है।
3: मैं दीदी के गोठ में सुने रहे हैं जो 36 कला जो ब्रांड है ओमा कैसे जाऊं मैं। मोरो जो आचार है क्वालिटी अच्छा से बेचा हुआ है, अच्छा से पैसा आवा है मोरो पास, जो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसे ही मोरो विचार है। इसे जो बाहर में बेचता वो कम दाम से मिलते, अगर हमारे जो 36 कला जो ब्रांड है वहाँ बेचबो तो हमारा कुछ ज्यादा फायदा मिली, ओकर से हमारा आर्थिक स्थिति है और अच्छा से सुधर जाएगी।
1: बहुत अच्छा लगा दीदी, वास्तव में हमारी कोशिश जो है वो सार्थक हो रही है, सफल हो रही है।
4: हमें वाला अच्छा लगी से दीदी, आप मन से मिल के बहुत अच्छा लगी।
1: आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू दीदी, इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर नारायणपुर जिले के माड़ के एक गाँव इरकभट्टी से। वो पहली कहानी सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी बल्कि एक बदलाव की नींव थी।
2: हो
1: बिहान के अंतर्गत बहुत काम हो रहा है और जब दीदी के गोट कार्यक्रम शुरू हुआ तो आजीविका से सशक्तिकरण की अपनी अपनी कहानी लिखती दीदियों को अपनी कहानी अपने जुबानी बताने का मौका मिला।
2: एक साल बाद ये मंच बन गया हवा संघर्ष ले सफलता के। जी हाँ, हर एक आवाज प्रेरणा हवा और हर कहानी एक नवा दिशा।
1: सही कहे,
2: पारस पखरा कस बिहान ले जुड़ के अबला ले सबला बने दीदी मन के सफलता के गोठ लेके ये दिशा में बढ़त फेर मिलबो। तब तक बर देवो विदा, जय जोहार, जय बिहान।
5: दीदी के गोठ, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को है, दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेस के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानिस ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध

0: सी का समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
2: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
3: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत

0: में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नाव के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को

0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था

0: टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम

0: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान तक प्रस्तुति दीदी के गोट केंजानोड कुंडे यायो नानो दादा एलाडी और केंजानोड की चंदा
1: और सुरुज ताके
2: जय बिहान
1: चंदा
0: इंगो नानो
1: और माटो पूछ कीतन
0: हाँ तालपा
1: उन माड़ता बारा कोमा अदे नग तीस तीस ता आकी अदे ना काल कले के टाव मड्डा बाता केला
0: अरे दीदी इद ताश्रम मम्मा दीदी के गोरता छठवां एपिसोड तक पूछा किस मत तो और इदे ना उत्तर कोंडे केंजा नोडकिन बड़ ए जाय मिंदे अल्ले पूछा किति नित के नन्ना के चिंतन उंड मर्राम इतके उंड वेड़सा बारा कोमा इतके बारा महीना तीस तीस ताकी इतके महीना ता दिनाम काल कले के टाव मड्डा इतके अलग अलग दिनाम इतके ईद ताश्रम कोंडे ओंड वेड़सातीन केतीता मतलब सुरुज दीदी ईद ना कोंडे ओंड वेड़सातीन केतीता
1: दीदी के गोड़ता बारवा कड़ी तग कोंडे दीदी लोरा संगे
0: हाँ हाँ
1: केंजनोड और संगतोरी संगे जुड़े मत्ता मया ओंड वेड़सा पूरा अत्तरी चंदा
0: तो कार्यक्रम केंजनोड कोंडेड़किन रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोड़ता ओंड वेड़सा पूरा तांक नरगे नरगे बधाई
1: नानो लोरी नेन मी संगे वेह चोरन ओंड वेड़सा पूरा अत्तरी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ता रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट ता विशेष प्रसारण तग
0: ओंड वेड़सा पूरा अत्ता इत कार्यक्रम ता मोदुल मूर माननीय केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तिरुमाल विजय शर्मा जी न शुभकामना और अलसुड़ते आसमत्ता
1: ओंड वेड़सा ता इदने का एनर्जी की अरते नानो लोरा तनवा काल ते निज बूतो की तवेसोड़ केंजा काल
0: हाँ शुरू तीना इंजे आना दीदी के गोट ता यात्रा नारायणपुर जिला ता इरक भट्टी तीना पुलिस जसपुर ता नार तगायवना मैदानी क्षेत्र तीना नेकाय गुप्पा क्षेत्र तगावेंडेवता
1: पीएम आवास तेगा मुतेना संग नई चेतना जेंडर अभियान 4.0 लखपति दीदी तीना पुलिस बैंक सकीता माटा बायर सेलर मीट तीना पुलिस नमो ड्रोन दीदी कृषि सकी आड पशु सकी दीदी लोरा मन ता माटा तीन केंच तलरी
0: समूह तीना पंचायत प्रतिनिधि नेगा एवता सफर वित्तीय लेन देन ता धोखाधड़ी साइबर फ्रॉड और वित्तीय साक्षरता छत्तीस कला ब्रांड लेकेट विषय की ना जानकारी दर्कता
1: सुरता था माटा वेहताल अदेन के अदेना गब नेकने लवाई मुता महिला सशक्तिकरण ता नेका वेसोड़ी और नरगे बदलाव अत्ता ओंड वेड़सा ता पूरा अत्तरी चंदा
0: हाँ एव माटा किन आलसित के सुरता वाता की दीदी के गोट कार्यक्रम इद ओंड वेड़सात लो पाते नानो लोरा लेंग तीन ओंड मंच इत्ता नानो लोरा कुंडे वेसुड़ी नगा पक्के मंता की बिहांते जुड़े मास मुन्ने दायाना और पूना अर बना कियाना बिहांता कुंडे डहकामी संगे मिंदे
1: दीदी लोर किन और पूना पहचान दुर्कता केंजनोड़ा आस तीन भरोसा किन पूना अर्क दुर्कता नेंड पूरा उंड वेड़सा ता यात्रा ता दीदी के गोट कार्यक्रम केंजी दीदी लोरा नरगे वेड़का आय मुता
0: सुरुज दीदी नेंड इचर दीबे नानलोर उंडे संगे मिंदेर
1: अले वराट इविकिन संग काल्या काल
0: जय बिहान दीदी लोरी
3: जय बिहान दीदी हो
4: जय बिहान दीदी
5: मोर नाम गीता वैष्णव जिला बेमेतरा
6: मोर नाम शीला मानेपुरी जिला बेमेतरा
7: मोर नाम श्रीमती रुक्मणी साहू जिला राजनांदगांव
8: मोर नाम ज्ञानेश्वरी निषाद जिला राजनांदगांव
9: मेरा नाम कविता अंगनपल्ली जिला बीजापुर
10: मेरा नाम सुनीता पुजारी जिला बीजापुर
1: चंदा बीजापुर तीना सुनीता दीदी और कविता दीदी मेडवत्ता निमा पुना बारे ते केला
10: मेरा नाम है श्रीमती सुनीता पुजारी मैं ग्राम पंचायत चेरपाल नियत नेलेनार से हूँ जिला बीजापुर मेरा समूह का नाम है सरस्वती स्व सहायता समूह उसमें मैं सचिव हूँ मेरा ग्राम संगठन का नाम है श्री कृष्ण ग्राम संगठन उसमें मैं अध्यक्ष हूँ समूह में जुड़ने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था फिर मैं समूह में जुड़ी जुड़ने के बाद फिर मुझे पता चला कि समूह से ऋण मिलता है मैं समूह से फिर बैंक लिंक के राशि निकाली और मेरा पहले से छोटा सा दुकान था तो फिर मैं बैंक से ऋण ली और मेरा दुकान को और बढ़ाई जब दुकान बड़ा की तो उससे जो राशि मिलता था मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखवाई करती हूँ और मेरा घर चलाती हूँ और मेरा अच्छा से चल रहा मेरा जीवन एक एपिसोड सुने हैं दीदी के गोट में एपीओ के बारे में तो प्रेरणा मिली एपीओ का गठन हुआ है 2025 में तो उसमें 600 दीदी लोग जुड़े हैं उसमें मुझे बेचने में दिक्कत होता था अच्छे दाम आने से बेचूंगी

0: बोल के रक्त तो खराब भी होता था।
1: अच्छा।
0: जब एपीओ आया तो मैं अभी अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। बिहान से जुड़ के मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं अभी लखपति दीदी के श्रेणी में हूँ। मैं इतने लोगों के सामने मैं अपनी सफलता कहानी को रख रही हूँ।
1: दीदी के गोट की ऐसी कौन सी विशेष अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
0: चंदा दीदी
1: हाँ?
0: जो गाना गाते ना, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे कौन लिखते हैं?
2: अच्छा, दीदी के गोट तगा मीर जोन पाटा केंजे तीर अदेन के तम तीर अदित के अदेन बेचुड़ बेचुड़ दीदी लोर खुद पारिता मती मनवोर और तुर पतंजलि मिश्रा दादाल मिंदेर और वेंड नानो लोरा भाव किन पाटा बना किन तोर अदेन दीदी लोर पारितोर
0: सुनवाई ना हम लोगों को
2: अले केंजाट और निक के नीलता पाटा सुबे नानो लोर किन ले जोन लोर दीदी के गोट केंजा मुंत।

0: यात्रा तक गवाह मिंदे ने निम लगातार केंजा मुंतीन ईद यात्रा ते नियत बाता अनुभव मत्ता निम्न नीवा माटा किला।
1: मोर गांव के नाम सुकुल देहान, मोर समूह के नाम है माँ बम्बलेश्वरी, ओमे मैं अध्यक्ष हूँ। सीएससी सेंटर चलाती हूँ दीदी, उसमें हाँ। आधार से पैसा वगैरह निकालती हूँ, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरती हूँ, फिर उसी में फैंसी डाली हूँ। ग्रामीण वितरक गैस का बीमा सखी का भी काम करती हूँ, 4-5 आजीविका कर लेती हूँ मैं। दीदी के गोट में 10वां एपिसोड सुनने के बाद हमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी मिला, संगठन में ग्राम संगठन में अनुभव साझा कर पाए। ओटीपी वगैरह आते हैं तो ओटीपी नहीं बताना है। दीदी के गोट हम ग्राम संगठन में सुने तो हमला बहुत अच्छा लगी से, प्रेरणा मिली से,
2: हमला एक मंच मिली से जहाँ से हम अपन कहानी ला साझा कर सकथन। तो एकल लिए
1: माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चंदा
0: हाँ नानो,
3: दीदी लोर अनुभव किन केंजा मुताल
0: तो इले लगी ता सुरुज दीदी वेरा कहानी केंजी मावा दूसर दीदी लोर वेंडे सीके मानता।
4: कविता दीदी, आप ये कार्यक्रम ना जब सुने हो तो ये कार्यक्रम के बारे में आप मन के पहली विचार का बनी?
5: मेरा गांव का नाम बोरजे है, मेरा समूह का नाम है चंद्रका स्व सहायता समूह, मेरा ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति। मैं समूह में जुड़ के बैंक लिंकेज राशि से बकरी पालन कर रही हूँ। मेरे पास 30-40 बकरियाँ हैं जिससे मैं सालाना इनकम 1,30,000 तक कमाती हूँ।
4: यानी आप तो लखपति दीदी भी
5: हो, लखपति दीदी में हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम में पशु सखी कृषि सखी के बारे में भी सुनी हूँ, जिससे अनुभव यही मिला है कि और बेहतरीन बन सके हम लोग, बिहान से जुड़ के आजीविका को बढ़ाए, अच्छे से पशुपालन करने की प्रेरणा मिली हमें। जब से बिहान आया है हम नियत नल्ला नार से जीवन ही बदल गया है।
4: क्या बात,
5: हमारे गांव परिवार की भी सब में सुधार आया है।
3: केंची चंदा दीदी लोरा वेसोड़
0: हाँ।
3: इधर गीता दीदी ना पारी मेंदे दीदी, दीदी के गोट केंची मीवा विचार तक बाता है बदला वत्ता।
6: मोर गांव है ग्राम पंचायत झालम, मोर सम्मुख नाम है नर्मदा माता, जिला बेमेत्र है। दीदी के गोट ला सरगुजा जिला से सुने रहे पहले।
4: अच्छा,
6: तो वहाँ से मोर मन में ना विचार भी अच्छा लगी से, मैं सोचे कम खर्चा से पापड़ बना लेता हूँ और बड़ी बिजौरी बना लेता हूँ, तो मैं वो चालू करे। मार्च में कवर्धा में 20,000 के बेचे हूँ और रायगढ़ में 40-45,000 के बेचे हूँ, रायपुर भी आ रहे हैं बेचे भर पापड़। तो अच्छा से तो मोर लड़का के वही पैसा के मैं फीस पटाए स्कूल की, और कुछ पैसा मैं घर बनाए हूँ, टाइल्स लगाए ओमा लगाए हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम जेंडर वाले में हम सुने हैं तो ओमा हमर मन के जानकारी बढ़ी से नया चेतना में। तो पति दुख देते, सास दुख देते, जहाँ हमारे जीआरसी सेंटर है वहाँ पूछे बढ़ आते सुन के। हमारे गाँव में जैसे बेटी बेटा में भेदभाव रही थे, गाँव में अगर वाद विवाद है, एक पति पत्नी में है, सास बहू में झगड़ा है, मारपीट करते, वो दोनों समझा।

0: कोर्ट में मैं यहाँ तीसरा एपिसोड सुने जेमे अनिता कश्यप दीदी है
1: हाँ,
0: है ना ओहा जो है कोसा के साड़ी बनाते ओहा हर सरस मेला में ले जाते और अपन कोसा के साड़ी ला बेचते वही सरस मेला में मैं भी अपन गढ़कलेवा के जो है स्टॉल लगा थू तो दीदी सन में मुलाकात बहुत हो रही से दीदी के गोठ में सुने तो वहाँ से प्रेरणा लेके ग्राम संगठन से मैं यहाँ 3 लाख के लोन ले और वहाँ के साज सजावट करे दीदी यहाँ राजनांदगांव में गढ़कलेवा के नाम से कैंटीन चलात हूँ ठेठी खुरमी अरसा ये सब चीज बनात हूँ और अभी यहाँ पे मोर पर डे 10 से 15 हजार की डेली के कमाई हुआ थे मोर साथ में 10 से 15 महिला और जुड़े हैं जेकर यहाँ से वो अच्छा से आजीविका चला थे दीदी के गोट के हर एपिसोड में दीदी मन पूछे रहे थे सवाल है ना तो वही वे में मोर एक सवाल रही से वे जो जवाब देव ना में मोला जवाब मिल गए ये बात मोला बहुत अच्छा लगी से दीदी के गोड़
2: अच्छा निकिम ईद नेला लगे माता की कुंडे सवाल का जवाब दोस्ता रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट हर लेंज ते दूसर लखीम वारते दोपहर 2 बजे तीना आर बस्तरिया आर सरगुजिया कार्यक्रम प्रसारण दोपहर 2 बजे मास 30 मिनट ते केंजा पर दीतीर ईद कार्यक्रम तगा योजना से संबंधित जिज्ञासा आयो के सवाल टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 तगा दोपहर 12:30-3 बजे फोन किस पूछा किया पर दीतीर
3: सिला दीदी इंजे नीमा नीमाटा किन केला
4: मैं बाबा घटोली शाह हूँ जिला बेमेतरा से मैं समूह के नाम है माम हमाया मैं बीओ की भी काम करता हूँ जो मैं सची हूँ
2: दीदी के गोट केंजा मुंती नित के नीमन ते पहला विचार बाता वत्ता
4: पहला विचार है इसकी मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ अचार पापड़ तो मैं बेचत रही हूँ लेकिन मोला वहाँ तक कैसे जाना है ऐसे ही की मैं दीदी के गोट में सुन के मोला प्रेरित हुई से तो संकुल में मैं मैडम माला बोले मैडम मोला कोई आजीविका काम से मोला पैसा चाहिए ऐसे ही की बोले हूँ तो मैडम हम दिलाई से तो फिर मैं अचार पापड़ ला बनाया हूँ तो गांव गांव में बेचा था स्कूल में भी दे देता हूँ लेकिन मोला आगे और बढ़ना है और अच्छा क्वालिटी से बेचा हुआ ऐसे के मोर विचार है
1: का बात है आपके अचार और विचार बहुत अच्छा है
4: मैं दीदी के गोठ में सुने रहे हैं हाँ। जो 36 कला जो ब्रांड है ओमा कैसे जाऊं मैं हाँ। मोरो जो अचार है क्वालिटी अच्छा से बेचा हुआ है अच्छा से पैसा आवा है मोरो पास जो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ ऐसे ही मोरो विचार है इसे जो बाहर में बेचता वो कम दाम से मिलते अगर हमारे जो 36 कला जो ब्रांड है वहाँ बेचबो तो हमारा कुछ ज्यादा फायदा मिली ओकर से हमार आर्थिक स्थिति है और अच्छा से सुधर जी
2: निकल नेला लगे माता दीदी मनवा जोन कोचिस आए अद सफल आया मुंता
5: हम वाला अच्छा लगी से दीदी आप मन से मिल के
2: नीर कोंडेडकिन इगवास वहताले निकल धन्यवाद सुरुज दीदी ईद प्रेरक यात्रा मधुलास मत्ता छत्तीसगढ़ ता आखिरी चेप्पा तद नारायणपुर जिला तमाड़ता ओंड नार इरग भट्टी तीना अद सुरुता कहनी सिरोप उंड शुरुआत बल्कि उंड बदलावता अर्रमता बिहान तेगा नरगे भूता आया मुंता और अचूट दीदी के गोट कार्यक्रम मुदुलास मत्ता अचूट तीना आजीविका ते बतकार निल्ला अतद तमवा कहनी लिखा किस दीदी तमवा कहनी किन तनवा पौटे के तना मोहका दरकता
3: ओंड वेरसा पेर के इद मंच बने मत्ता संघर्ष तीना सफलता ता लेंग बने मत्ता
2: निजाम के तीन
3: और कुंडे कहानी ओंड पूना अर बना कित्ता नेका नेला बिहान ते जुड़े मास नेका मजबूत बने मास दीदी लोरा सफलता ता माटा किन पोइस इग वेंडे कार्यकाल अचवर दयाना इमुट विदा
6: जय जोहार जय बिहान
7: दीदी के गो
8: अभी आप सुन रहे थे दीदी के गोट हल्बी माफ कीजिएगा गोंडी बोली में आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है दोपहर के 2:45 हुए हैं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। नक्श लयालपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था खय्याम ने। अगला गीत बेताब फिल्म से शब्बीर हुसैन और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे बेताब फिल्म का नगमा शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुने लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में वारिश फिल्म का नगमा। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 4 बजे विशेष सभा के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के

बिस्टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं, और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस, एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSP। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूँगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है उसको उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये

0: टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है उसको, उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के, ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये

0: सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी, 2018 यूपीएससी में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जा कर के फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
0: जी जी, तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा, आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी
0: जी,
1: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
0: जी,
1: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर
0: जी।
1: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं
0: जी,
1: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और एक मेरा
0: मातृभूमि।
1: मातृभूमि,
0: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
1: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
0: जी,
1: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो एसएसबी जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से, तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
1: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
0: जी
1: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पे कई ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
0: जी, तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहां पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
0: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है, उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्सेज।

0: आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: जी कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सकें और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
0: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
1: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
0: सर आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया।

0: मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे बीइंग अ लोकल, मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसकी ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर आपकी पूरी सर्विस में, अभी तक की आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर ये जो आप

0: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम में उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CINGW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
1: जी
0: अपना विजय तिरंगा फहरा चुकी है।
1: बहुत खूब सर, क्या बात है।
0: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
1: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
1: जी तो सर, किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके हैं उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज़्यादा कठिन आपको लगता है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
1: जी
0: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पे टेन्योर रहा है उसे सीखा है, उसको ट्रेनीज को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
1: जी अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
0: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
1: जी,
0: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
1: क्या बात है।
0: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
1: जी
0: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
1: जी,
0: उसे बखूबी निभाए।
1: क्या बात है। ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार, जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
0: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है,
1: ठीक है।
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
1: जी
0: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी
0: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
0: जी बिल्कुल
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे
1: जी,
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
1: जी,
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
1: जी,
0: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं
1: जी। और आपको हम

0: चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
1: जी जी बिल्कुल, वो मेरे मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबॉर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में।
0: जी, तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
1: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
1: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
0: जी,
1: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले, जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है, वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना।
0: जी,
1: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में। जिस एरिया में मैं काम करता था
0: जी,
1: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे, जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
0: जी
1: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
0: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको, मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
0: जी,
1: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर, किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना। और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी, कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
0: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया, तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था, वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया या आतंकवादी को मार दिया। असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकलें, जब आपका कॉन्वॉय निकले
0: जी,
1: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
0: क्या बात है।
1: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
0: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है, वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
0: जी,
1: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
1: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था
0: जी।
1: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आपको
0: जी,
1: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
0: जी,
1: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई
0: लगभग जी,
1: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने 2 टीमें बनाई और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
0: जी,
1: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी

0: फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ, और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों? और जंगल में एक सिद्धांत चलता है, यू मिस एंड आई हिट। और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था, से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज वहां पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे लखीसराय क्षेत्र में, कहें पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था, अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा।
1: बिल्कुल,
0: जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ।
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी, कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहाँ जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था यहाँ स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूँगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा
1: सकता। क्या बात है, और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता

0: है उसी जज्बे के साथ जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहाँ पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणकम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची तिरुचुपल्ली तमिलनाडु से
1: जी, धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
0: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
1: कजरा लिखा है,
0: हाँ कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
1: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: मेरे टीम के साथी हैं, साथी हैं, कार्य किया है हमारे साथ।
0: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to RJ sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, आपका message हमने पहुंचा दिया है, Shivam sir सुन रहे हैं।
1: जी, धन्यवाद, Mrs. and Mr. Lodh जी, मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। इसके अलावा मैसेज है ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे और खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सैल्यूट है, ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं, आप हमारे असली नायक हैं, जय हिंद जय भारत। ये है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए, रोहित मेहर हैं ये विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
1: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा, शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही हमारा उद्देश्य था,
0: बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ, उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, गारंटी अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर आपको।
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन प्राइड ऑफ बिहार शिवम कुमार।
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
0: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा
1: जी। धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का
0: जी जी जी उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं okay. तो अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो okay. जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या तो, बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror-free. Proud of him. Ayush

0: दारिच हैं ये नई दिल्ली से
1: जी, बिल्कुल ये हमारे जूनियर हैं और मैं उम्मीद अच्छा। करता हूँ कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है
0: जी,
1: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के साथ।
0: बिल्कुल, और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे
1: जी बिल्कुल।
0: और यह है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ शालिनी पाठक लिख रही है आपके लिए।
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
0: और यह है मैं सोता हूँ रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है, शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं यही हमारी कल्पना है।
0: और यह सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही भी
1: जी, पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे जिन्होंने
0: जी,
1: गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया
0: जी जी जी। और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन
0: जी
1: संभव ही नहीं था
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
1: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी। आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम ये है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज़ हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में। तभी जा कर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है, वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
0: जी
1: 2025 के
0: नवंबर, 2025 नवंबर, जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ,
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था,
0: जी
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
0: जी, और सर इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है,
0: जी
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
0: जी, तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है, वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि ज़िंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था।
0: जी,
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है,
0: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
1: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ, जिसमें कि 3, हम लोग 4 भाई बहन हैं, और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म

0: पत्नी भी हैं
1: जी,
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा,
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था, 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे,
1: तो जाहिर ये सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट।
0: हाँ, ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूँगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी ज़रूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये हैं हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे और से सल्यूट, और काफ़ी लंबा मैसेज है, ये हैं पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से, और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें, और जय हिंद कह रहे हैं, ये हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी एच सी आर्मर सर, योर लीडरशिप इज़ इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और योर वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथ ही होंगे।
0: बिल्कुल, मेरे साथ ही हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद, जय भारत।

आयोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। डांडा माली लोकगीतों के इस कार्यक्रम में सुनेगा बालमती बघेल और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत रात्रि 8 बजे। रात्रि 8 बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम पीला मन काजे गोठ, इसमें आप सुनेंगे कल्पना चावला के बारे में प्रस्तुति होगी फूल सिंह कश्यप की। ग्राम पंचायत की विकास गाथा, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर लोकगीतों के कार्यक्रम रैनी में सुनिएगा बंसिंह कश्यप और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। आनंद लीजिएगा गैर फिल्मी गीतों का रात्रि 10 बजे। और रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए हमारी कल की सभाओं के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम इनसे मिलिए का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर। सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर चिंतन, आलेख और स्वर होगा लेखराम साहू का। श्री रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6 बजकर 25 मिनट पर मिताली सिंह के स्वर में। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6 बजकर 35 मिनट पर और दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर। सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर कार्यक्रम हुलहुली में आप सुनेंगे परदेशीन माता पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, इसमें आप सुनेंगे स्नैक रेस्क्यू, इस विषय पर बातचीत। प्रतिभागी होंगे अनंत भोयर, उकेश्वर भारद्वाज। संचालन करेंगे शशांक श्रीधर शेंडे और होगी फिल्मी गीतों से सजी मधुरी माँ। लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी आप सुनेंगे सुबह 9 बजे, इसमें आप सुनेंगे कविता पाठ घासीराम से। ठसा का संचालन करेंगे चमराराम कश्यप और गोंडी कहानी सुनाएंगी घसनी। इस कार्यक्रम के संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें आप सुनेंगे कर्ज फिल्म के सदाबहार नगमे गुलशन। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मेरी पसंद यानी उद्घोषक के पसंद के गीत सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर रुसरुसा लोकगाथा में आप सुनेंगे सुलोचना सुसीसीना, इसमें आप सुनेंगे गायिका होंगी बेलमती नाग और रेमे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार आधारित होगा गीतकार असद भोपाली पर। गुड़दुम लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बुदरी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम कला और कलाकार घर द्वार, ग्रामीण महिलाओं का यह कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर। दोपहर 1 बजकर

0: कल शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार आप सुनेंगे गोंडी बोली में कल शाम 5:05 पर। शाम 5:10 का समय होगा युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का। गोविंद राम बघेल और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत सुनेगा शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आमचो गांव ग्रामीण श्रोताओं का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। रात्रि 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम घलर में सुनेगा सोनादई और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत पीलामन काजे कोट। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। इसमें आप सुनेंगे महात्मा ज्योतिबा बाई फूले के बारे में। प्रस्तुति होगी यशपाल सिंह ठाकुर की। नंजर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। इसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता कामदेव बघेल से भेंट करेंगे भरत कुमार गंगादित्य। खेल पत्रिका ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे नमिता बघेल से ली गई भेंट वार्ता भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की संयोजक होंगे चंद्र ऋषि ठाकुर। ये तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। अब लीजिए सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में।
1: जुहार समसामयिक विषय मन ने आधारित कार्यक्रम मन संगे मैं हितप्रेता ठाकुर सुनतो लोग मन आज ही आमी ये कार्यक्रम बाटले तुमकी सांगवा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चो गोट के। भारत जसन खुब्बे बड़े अरु बरन बरन मान संगचो देश ने गुण संगचो स्वास्थ्य सेवा मन के जमाए नागरिक मन लगे अमरातोर गोटो बड़े गोट रली से ऐ गोट चो निदान डगरा तो उवाट ने केंद्र सरकार सितंबर 2021 ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चो मुरियानी कर ली। एचो उद्देश्य गोटुक असन डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र विकसित करतो रली जेथाने लोग मन डॉक्टर अस्पताल प्रयोगशाला मन फार्मेसी आरु बीमा कंपनी मन गोटुक सुरक्षित आरु एकीकृत मंच ने जुहुक मिसुक सकत। ए मिशन एचो सबले महत्वपूर्ण कड़ी आए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जेके आभा बलुआत। ये 14 अंक मंचो गोटुक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान संख्या होय से आभा लागून लोग मन आपलो देह पाए संचो जमाए रिकॉर्ड जानकारी गुट की ठान ने जोंगुन सुरक्षित राखुक सकत। आरु आपलो सहमति ले देश चो कोनी बल्ले ABDM बल्ले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन संगे मिसलो अस्पताल नहले डॉक्टर संगे आपलो जीव जांगर चो गोट गोठियाउक सकत। मई 2026 तक ए मिशन सांगतो गोठियातो असन सहरानी पावली। देश ने 93 करोड़ ले अधिक आभा खाता बनातुर होली से आरु 104 करोड़ ले अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड मन के एक खाता मन ले जोड़तुर बले होली से। ये उपलब्धि भारत के विश्व ने सबले बड़े डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क मन चुठान दिया से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चो गोटोक प्रमुख लाभ ये आए कि अदाय मरीज मन के घन घन आपलो मेडिकल फाइल मन संगे धरून भी हिंडा बुला होते रतुर जरूरत नहीं पड़े। डॉक्टर बीमार लोग जो सहमति होलो ने हुंचो जूना स्वास्थ्य रिकॉर्ड दखून अधिक नंगत आरु अच्छा इलाज करुक सकत। एचोले फुकहा जांच आरु समय चो बचत होए से ए मिशन उवाट लागून स्कैन एंड शेयर सुविधा ले अस्पताल मन ने OPD पंजीकरण के सरल बनाउन दिली से। मरीज सोजे QR कोड स्कैन करून डंकी मिनट ने आपलो पंजीकरण कराउक सकत। गोटुक जांचा परखा हिसाब ने एचोले अस्पताल मन ने टाकून रतो समय 1 घंटा ले घटून सोजे 2 ले 5 मिनट तक होन गेली से। ABDM चो आउर गोटोक घटक आए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जेकी स्वास्थ्य परगन चो UPI बले बलुआत। ए लागू नागरिक लोग मन कोनी बले डिजिटल एप ले डॉक्टर खोजुक सकत आरु ऑनलाइन देह पाए चो आपलो पूछ परख काजे गोट बात करुक ला सकत। संगे चे अस्पताल ने अपॉइंटमेंट बल्ले डॉक्टर संगे भेंट करतो काजे समय बल्ले धरुक सकत। हाल मौका आरोग्य सेतु 2.0 के बल्ले डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मंचो व्यापक मंच चो रूप ने विकसातुर होली से। अदाय ये सोजे COVID-19 संगचो एप निरली से पहरले स्वास्थ्य रिकॉर्ड टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य बीमा और दूसर डिजिटल सेवा मंचो

0: एकीकृत माध्यम बनुन गेली से। सरकार नानी अस्पताल मन और क्लिनिक मन के डिजिटलीकरण का जे ई सुश्रुत क्लिनिक प्रणाली बले मूर कर ली से। ये अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली बीमार लोग मंचु पंजीकरण बिलिंग बल्लो ने इलाज खर्चा और प्रबंधन के सरल और व्यवस्थित बनाए से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चो गुटो खास गोट इचो गोपनीयता बल्ले तुम चो जानकारी और को कई जानकारी नी देतोर होए दे और डेटा सुरक्षा आए। स्वास्थ्य रिकॉर्ड कोनी केंद्रीय सर्वर ने संगातुर नी होए पहारले संघ चो अस्पताल नहाले स्वास्थ्य संस्था चो लगे सुरक्षित रहे से। मरीज चो स्पष्ट सहमति नोहलो कोनी बले स्वास्थ्य जानकारी के दूसर लोग मन के सांगुक नी होए। ये मिशन सोचे स्वास्थ्य सेवा मन तक सीमित नहीं है पहारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता बल्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचो स्वास्थ्य अनुसंधान के बल्ले नवा बाट दिखाए से। सरकार साही और बोध जसन पहल मन बल्ले मूर कर ली से जेचो उद्देश्य सुरक्षित और नैतिक उवाटले स्वास्थ्य परगन मन ने AI चो उपयोग बढ़ातो रहा है। आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत चो डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति के मजबूत आधार बनुन गेली से। एचोले मरीज मन चो समय और खर्चा दोनों कम होए से स्वास्थ्य सेवा मन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनते जाए से और देश डिजिटल इंडिया चो लक्ष्य चो बांटने गोटोक और महत्वपूर्ण ढांका बढ़ाए से। निश्चित रूप ले एतु बरक मन ने ये मिशन गोटोक गोटोक लोग मन की सुरक्षित सुलभ और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा मन दिया तो ने महत्वपूर्ण भूमिका ने पूरे आए दे और भारत के डिजिटल स्वास्थ्य चो परगन ने वैश्विक नेतृत्व दिया दे।
1: भारत सरकार आपके द्वार अभी आप समसामयिक विषय पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। अब पेश है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी में, जिसमें मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त चेतना यादव
1: और मैं हूं आपकी कंपेयर साथी रिया प्रियांशी नाग। हम फिर हाजिर हैं इस खूबसूरत बारिश की ढलती शाम में, छत पर गिरती बूंदों की आवाज़ और रेडियो से आते मधु संगीत के साथ। तो दोस्तों, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मेहमान की जो बिना बुलाए हर घर में पहुंच जाता है।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तनाव की। फर्क बस इतना है कि यह कोई मिठाई नहीं बल्कि सर दर्द लेकर आती है।
0: बिल्कुल, आजकल तनाव भी काफ़ी स्मार्ट हो गया है। कभी ऑफिस की फाइल बनकर आता है, कभी पढ़ाई का सिलेबस लेकर, तो कभी मोबाइल की बैटरी 1% देखकर।
1: और कुछ लोगों को तनाव तो तब शुरू हो जाता है जब घर से आवाज आती है कि जरा इधर आना, बात करनी है।
0: दोस्तों, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन तनाव एक ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय रहते इसे संभाला जाए तो जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। इसलिए तनाव से घबराना नहीं, उसे समझदारी से संभालने की जरूरत है।
0: तो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कभी दिमाग बोले बस अब और नहीं, तो समझ जाइए जनाब, तनाव ने दस्तक दी है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम तनाव को कहेंगे थैंक यू।
1: तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं तनाव से हम कैसे निपट सकते हैं।
0: बिल्कुल, लोगों को खुलकर बात करना चाहिए। जिस बात को हम मन में दबाकर रख लेते हैं, वही हमारे लिए धीरे धीरे बोझ बन जाती है।
1: हाँ, इसलिए अपनी बातों को अपने भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए और लोगों को थोड़ा टहलना चाहिए आसपास।
0: हाँ बिल्कुल।

0: सुबह या शाम की 20 से 30 मिनट तक की सैर आपके दिमाग को नई ऊर्जा देती है। कभी पार्क की हवा भी वो काम करती है जो कई घंटों की चिंता नहीं कर पाती।
1: और दोस्तों, हमें मोबाइल से भी थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जब हमारे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आए तो हमें नोटिफिकेशन को इग्नोर करना चाहिए।
0: हाँ, और कभी कभी बिना वजह के भी मुस्कुरा लिया कीजिए। मुस्कान मुफ्त है, लेकिन इसका असर बहुत कीमती है।
1: अपने पसंदीदा शौक को समय दीजिए, गाना सुनिए, किताबें पढ़िए, ड्राइंग कीजिए या फिर कुछ और कीजिए। खुशी के छोटे छोटे पल तनाव दूर करने में मदद करते हैं।
0: हाँ, लेकिन दोस्तों, आपका शौक खाना बनाना है तो ध्यान रहे, तनाव में नमक के जगह चीनी और चीनी के जगह नमक ना डालें। ऐसा करने से तनाव और भी बढ़ सकता है।
1: हाँ, और आपको अच्छी और पूरी नींद लेनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, खुद की तुलना दूसरे से कभी नहीं करनी चाहिए।
0: हाँ, कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया पर हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे की कहानी हमें पता नहीं होती।
1: इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की किताब को किसी और की कहानी से कंपेयर मत कीजिए। हर इंसान की मंजिल और सफ़र अलग होती है।
0: कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह मिल ही जाता है। अगर मजबूत मन हो तो तनाव से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल ही जाता है।
1: याद रखिए, तनाव आना गलत नहीं है, लेकिन उसे हमेशा अपने ऊपर हावी रहने देना भी सही नहीं है।
0: और कभी लगे कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रहा है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल दोस्तों, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है।
0: दोस्तों, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा गुनगुना लो, ज़िंदगी को आज फिर से अपना लो। जो बीत गया उसे हवा के साथ बहने दो, हर नई सुबह को उम्मीदों से जोड़ो।
1: तो आज का मंत्र यही है, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुलकर जी लीजिए, हर छोटी खुशी को गले लगाइए।
0: तनाव को कहिए अब बस बहुत हुआ, और ज़िंदगी को दिल से अपनाइए। इसी प्यारी सी बात के साथ लेते हैं एक छोटा सा संगीत विराम। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे भी होगा ढेर सारा मनोरंजन, दिलचस्प बातें और आपके पसंदीदा गीत। लेकिन उससे पहले सुनिए ये प्यारा संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: दोस्तों, इसी के साथ बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम को और बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम में क्या क्या है खास, है ना चेतना?
0: बिल्कुल रिया। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम आज के फनकार, जिसमें हम सुनवाएंगे आज के फनकार जो हैं उनके गीत और बात करेंगे कुछ ज्ञान से जुड़ी बातों पर।
1: जी हाँ दोस्तों, चर्चा करेंगे कुछ खेल की ताज़ा खबरों पर भी, और इसी के साथ कार्यक्रम युवा प्रतिमा में सुनेंगे सितारवाक इच्छेस कुमार सेठिया से।
0: वैसे रिया, तुमने अभी तक ये नहीं बताया आज के हमारे फनकार हैं कौन।
1: बताती हूँ चेतना, लेकिन मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बताऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी। तुम सोच कर बताना वो कौन है, और दोस्तों आप भी सोचना जरूर।
0: अच्छा चलो, उनके बारे में ही बता दो, मैं कोशिश करूंगी उनको पहचानने की।
1: ध्यान से सुनना चेतना फिर। दोस्तों, जब भी स्क्रीन पर उनकी एंट्री होती है, मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है। उन्होंने आशिकी से मोहब्बत का नया एहसास दिया और एक विलन में

0: श्रद्धा कपूर को। कहते हैं कि पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी मुस्कान से हो जाती है। आज की हमारी फनकार कुछ ऐसे ही हैं। इनके चेहरे की मासूमियत, कैमरे के सामने आत्मविश्वास और हर किरदार में जान डाल देने का अंदाज इन्हें सबसे खास बनाता है।
1: बात तो तुमने बिल्कुल सही कही चेतना। दोस्तों आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1989 में हुआ मुंबई में, और हम सभी जानते हैं कि उनके पिता शक्ति कपूर हैं और उनकी माता का नाम है शिवांगी कपूर। दोनों ही हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं।
0: और हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी होने के बावजूद इन्होंने अपनी अलग पहचान अपने दम पर बनाई है।
1: और उनकी एक ऐसी भी फिल्म है जो सिर्फ हिट नहीं, एक अच्छी याद बन गई है हर किसी के लिए। शायद हमारी भी दोस्तों बात कर रहे हैं उस गाने की जिसे सुनते ही जैसे कॉलेज के गलियारे, दोस्ती की मस्ती और पुरानी यादें आंखों के सामने घूमने लगती है।
0: जी हाँ दोस्तों, सुनते हैं ये गीत फिल्म छीछोरे से, जिसे गाया है तुषार जोशी ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने और इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते हैं ये गीत जो आपको भी अपने दोस्तों की वो पल याद दिलाए जो आज भी मुस्कान ले आते हैं।

इसके बाद मैं कोशिश करूँगा राग भूपेश्वरी में एक छोटा सा आलाप लेने की। राग भूपेश्वरी नाम से ही भोपाली से बहुत परिचित लगता है। राग भूपेश्वरी के स्वर भोपाली के स्वर की तरह ही होते हैं, पर इसमें जो धैवत होता है वो कोमल होता है, जो इसे करुणा रस से भर देता है।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना युवा प्रतिभा में सितार वादक इच्छेश सेठिया से सितार के बारे में और इसकी धुन।
1: दोस्तों, अगर आपको लगता है श्रद्धा कपूर सिर्फ मासूम और सीधी सादी लड़कियों के रोल कर सकती है, हाल ही में साल 2023 में आई उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म में श्रद्धा का एक ऐसा अवतार देखने को मिला जिसने थिएटर्स में आग लगा दी।
0: हाँ चेतना, उनकी इस फिल्म में एक अलग ही झलक देखने को मिली। दोस्तों, सुनते हैं इसी फिल्म का ये प्यारा सा गाना जिसे अपने स्वर दिए हैं जुबिन नौटियाल ने और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत देकर और भी प्यारा इस गीत को बनाया है प्रीतम ने।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद सुनते हैं आज के खेल समाचार में खेल से जुड़ी ताजा खबरें।

दोस्तों खेल से जुड़ी पहली खबर है, भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच टीम इंडिया के लिए बेहद निराशाजनक रहा। भारतीय टीम महज 76 रनों पर ऑल आउट हो गई, जो T20 में भारत का दूसरा सबसे छोटा स्कोर है। इंग्लैंड ने भारत

0: देने के लिए आयोजित किया गया है।
1: विंबलडन की तरह दिल्ली में महाकुंभ। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से 17 से 23 अगस्त 2026 तक होने वाली BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 17 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है।
0: दोस्तों, आज के खेल समाचार में बस इतना ही।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: चेतना, क्या तुम्हें पता है श्रद्धा सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी है। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। उनके गाए गानों में से एक ये गाना है जो हम सुनवाने जा रहे हैं।
3: ये गाना है फिल्म एक विलन से, जिसके गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतवद्ध, और इसे गाया है अंकित तिवारी ने।

0: करते हैं सामान्य ज्ञान पर।
1: भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ सिंह शीर्ष से लिया गया है। इसमें चार सिंह हैं
0: और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है और हमारे देश की सत्य और न्याय के प्रति आस्था का प्रतीक है।
1: अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु धान की खेती के लिए बेहद उपयुक्त है।
0: भारत का अंतरिक्ष सफर। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज की ज्ञान की बातों पर इतना ही। चलते हैं एक बार फिर सुरों के इस महफिल में।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम बस इतना ही।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी छोटी हो सकती है लेकिन मुस्कुराने की वजह कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। इसी मुस्कान के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मैं रिया प्रियांशी नाग
1: और मैं चेतना यादव। आशा करते हैं दोस्तों आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
0: दिल से सुनते रहिए, दिल से जीते रहिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
2: युवाणी, अभी आप युवा दोस्तों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव पर। यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
4: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों

0: देश 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
3: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार,
4: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा करीन फेरबदल। गौरेला पिंडा मरवाही जिला के कलेक्टर बदले गीस। प्रदेश मा अवैया बछल्ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले हो ही शुरू। और कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक EOW के रिमांड मा भेजे गीस। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा फेर बदल करे हे। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगल ला स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हे। उखर जगह मा तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दयाराम ला गौरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर नियुक्त करे गए हे। उन्हें हेमंत रमेश नंदनवार ला तकनीकी शिक्षा रोजगार और प्रशिक्षण के संचालक बनाए गए हे। एकरे संग ओमल्ला छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार घलो सौंपे गए हे। एकर अलावा सुमित अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद ला महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिम्मेदारी दे गए हे। प्रदेश मा अवैया बछर ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होए हे। इस संबंध मा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह लोक शिक्षण संचालनालय ला पत्र भेज के दिशा निर्देश जारी करे हे। एकर तहत वर्तमान मा राज्य संचालित होवैया 16 जून ले 30 अप्रैल के शिक्षा सत्र ला अब खत्म कर दे जाही। एकर जगह मा देश के आने प्रमुख शिक्षा बोर्ड और मंडल के समान है। अब छत्तीसगढ़ मा घलो नवा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होके 31 मार्च तक चलही। फिर छात्र मन ला मिलैया गर्मी छुट्टी मा कोनो कटौती नहीं करे गए। प्रदेश मा 1 मई ले 15 जून तक गर्मी के छुट्टी पहली जैसे ही रही। 1 अप्रैल के नवा शिक्षा सत्र शुरू होए के संग ही स्कूल मा साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। ए दौरान छात्र मन ला निशुल्क पुस्तक सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और स्कूल ड्रेस बांटे जाही। उहे आने सबो छात्र मन के हित के योजना और गतिविधि घलो अनिवार्य रूप ले शुरू करे जाही। इस बीच राज्य सरकार हा अवैया शैक्षणिक सत्र ले प्रदेश के सबो स्कूल मा कक्षा पहली मा प्रवेश बर न्यूनतम

0: आयु 6 बछर निर्धारित कर दे हे। ए नवा व्यवस्था सबो शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय पर लागू होही। संगे संग शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के तहत निजी विद्यालय के 25% आरक्षित सीट मा होइया प्रवेश बर घलो ए नियम प्रभावी रही। ए निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप ले गए हे। स्कूल शिक्षा सचिव रहले जारी निर्देश के अनुसार अवैया शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल के लइका मन के उम्र के आधार मा प्रवेश दे जाही। अभिभावक और लइका मन के सुविधा बर राज्य शासन ह 1 अप्रैल के निर्धारित आयु पूरा नहीं कर पाए लइका मन बर 1 जुलाई तक उखर जरूरी आयु पूरा होए तक 3 माह के छूट दे हे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक ला लागू करैया छत्तीसगढ़ देश के पहली राज्य होही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता मा काली मंत्रालय मा होए राज्य मंत्रिमंडल के बैठका मा ए विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन करेगी। बैठका के बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा बतायन की ए विधेयक के उद्देश्य राज्य मा व्यापार और उद्योग स्थापित करे के प्रक्रिया ला ज्यादा सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्री परिषद हा बस्तर फाइटर्स मा फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम मा संशोधन ला स्वीकृति दे दे हे। उन्हें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन करेगे हे। एखले राज्य मा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान के स्थापना ला प्रोत्साहन मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राज्य के शासकीय सेवक मन बर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना के शुभारंभ करीन। एकर उद्देश्य शासकीय सेवक मन ला आकस्मिक परिस्थिति मा सम्मानजनक तुरते और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हा कहीन कि अब कर्मचारी मन ला अचानक पड़े जरूरी बर निजी साहूकार या ऊंचा ब्याज दर मा ऋण ले बर व्यवस्था के सामना नहीं करना पड़ी। सरकार हा ऐसन व्यवस्था विकसित करे है जेखर जरिया ले उमन बिना जरूरी कागजी प्रक्रिया के अपन पात्रता के अनुसार कम समय मा ऋण पा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ सरकार हा राज्य मा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ला बढ़ावा देबर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ला तेजी ले बढ़ाए के फैसला करे हे। सबो जिला के RTO और DTO ला अपन क्षेत्र मा चार्जिंग स्टेशन ला जगह चिन्हित करे और NOC के प्रक्रिया तेज करे के निर्देश देगे हे। वर्तमान मा अलग अलग कंपनी के अलग अलग एप है जेखर ले उपभोक्ता मन ला परेशानी होते। सरकार अब राज्य स्तर मा एकीकृत प्लेटफॉर्म एप बनाही। उन्हें भारत सरकार घलो यूनिवर्सल EV चार्जिंग एप लावत है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ला करीब 500 करोड़ रुपया के कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार करेगी रहीस। आज ओमल्ला रायपुर के विशेष अदालत मा पेश करेगी जहां कोर्ट हा रामगोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW के रिमांड मा भेज देगे है। जानबा के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ ए मामला मा विशेष अदालत हा स्थायी वारंट जारी करे रहीस। उखर तलाश मा कतकोन जगह छापा घलो मारेगे रहीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली रायपुर के डूमर तलाई मा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डहर ले विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 के लोकार्पण करीन। ए दौरान श्री साय हा घोषणा करीन कि परिसर के नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम मा करे जाही और यहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी के तर्ज मा उखर 15 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित करे जाही। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहीन कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संग ईज ऑफ लिविंग ला घलो समान महत्व देवत है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय डहले भुवनेश्वर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ला अच्छा प्रदर्शन बर सम्मानित करेगी। ये कार्यशाला देश के जनजाति अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण बर आयोजित करेगी रहीस। एमा 29 राज्य के जनजाति अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि मनहा हिस्सा लेन। कार्यशाला के दौरान जनजाति अनुसंधान संस्था के कार्यप्रणाली, जनजाति विकास बर अनुसंधान, आधुनिकीकरण, GIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार परिस्थिति तंत्र जैसन विषय में विचार विमर्श करेगी। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में

चालू शैक्षणिक सत्र मा कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पहली बछर मा प्रवेश बर ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया काली 10 जुलाई ले शुरू होवत हे। काउंसलिंग मा भाग लेवैया इच्छुक अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज के संग 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकत हे। अभ्यर्थी के प्रवीण सूची 23 जुलाई के विश्वविद्यालय के वेबसाइट मा प्रकाशित करे जाही। और अब थोरकुन समाचार सार मा, राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेन व्यास के काली 8 जुलाई के निधन होगी। श्री व्यास राजनांदगांव प्रेस क्लब के संरक्षक रहिन। उमनहा लंबा समय तक राजनांदगांव जिला के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में घलो अपन सेवा दिन। केंद्रीय गृह मंत्रालय डहा ले जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना ला राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित करे गए है। गृह निर्माण मंत्रालय डहा ले हर बछर देश भर के पुलिस थाना के मूल्यांकन आने आने मानक में करे जाते। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा CSIR UGC नेट परीक्षा पर अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दे है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला में खमरिया चूना भट्टी के तीर दो मोटरसाइकिल के टकराए ले दो लोगन के मौत होगी, फिर एक माई लोगिन गंभीर रूप ले घायल हो गए है। और दुर्ग जिला के मोहन नगर थाना पुलिस रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेलत 12 जिन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। ओखर तीर ले 9 लाख रूपया ले ज्यादा नगद पैसा और 10 मोबाइल जब्त करे गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर, राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उद्घोषणम्।

0: राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अन्तर्गतं वयस्क साक्षरता मानदण्डानवाप्य उत्तराखण्ड राज्यं देशस्य पूर्णसाक्षर राज्यानां गौरवपूर्ण सूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत् कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रान्त वृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये पञ्चक्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रियप्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसितभारतं भवितुं सङ्कल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिकविकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन ऑस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम् अनवरतम् समेधते।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारंभः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजन इति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिक वृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः

एफएम बैंड और मीडियम वेव पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। हम आपको याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप आनंद लेंगे गैर फिल्मी गीतों का, और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। समय है शाम के 6:35 का। लीजिए सुनिए जलधर और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत।

0: जलधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा

0: असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

देश के अन्य शिक्षा बोर्डों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। विजय दयाराम गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के नए कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया और कोल लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक के ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की ही तरह यथावत रहेगा। 1 अप्रैल को नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और गणवेश का वितरण किया जाएगा। वहीं अन्य सभी छात्र हितैषी योजनाएं और गतिविधियां भी अनिवार्य रूप से शुरू की जाएंगी। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। यह नई व्यवस्था सभी शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी यह नियम प्रभावी रहेगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए राज्य शासन ने 1 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए 1 जुलाई तक उसके आवश्यक आयु पूर्ण होने तक 3 माह की छूट प्रदान की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल पारदर्शी डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्रिपरिषद ने बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरूद्व अल्प

अवधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दयाराम को गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं हेमंत रमेश नंदनवार को तकनीकी शिक्षा रोजगार और प्रशिक्षण का संचालक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा सुमित अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद को महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश के सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बहुचर्चित महादेव ऐप भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा को नामजद किया है। इनके साथ ही जांचकर्ताओं ने इस घोटाले के मुख्य सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी अदालत के समक्ष पेश किए हैं जिन्हें पहले ही आरोपित किया जा चुका है। इन भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद ली जा रही है। विदेश भाग चुके 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय कानून के तहत इन व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है जिससे देश में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में कल गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से कोर्ट ने रामगोपाल अग्रवाल को 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में उच्च स्तरीय विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, प्रमुख पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ ही प्रदेश की लोक कलाओं, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहरों को पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में के प्रवेश प्रथम वर्ष

0: छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि और हल्की से मध्यम वर्षा का गतिविधि जो है आगामी चार दिन तक रहने की संभावना है। चार दिन के पश्चात ये वर्षा का गतिविधि थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है और चार पाँच दिन के पश्चात दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी विस्तार रूप से वर्षा होने की चांसेस है।
1: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल 8 जुलाई को निधन हो गया। श्री व्यास राजनांदगांव प्रेस क्लब के संरक्षक थे। उन्होंने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर में पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यह परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में खमरिया चूनो भट्टी के पास दो मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और दुर्ग जिले के मोहननगर थाना पुलिस ने रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेल रहे 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 लाख रूपये से अधिक नकद राशि और 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। विजय दयाराम गौरेला पेंड्रावाही जिले के नए कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया। और कोल लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक के ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज रात 10 बजे आप आनंद लेंगे गैर फिल्मी गीतों का और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: मैं तो भेट गाठो लू ने हाली आम चो दादा दीदी मन संग भेट गाठो हूँ ने तो एची संगी बस्तर किशोर कार्यक्रम संत सफाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन संग जोरिया संगवारी मन की मयाड़मा
1: मैं सोमारी
0: हामी दोनों करूं से राम राम
1: तो अड़मा पीला मन की काय बुलक सी
0: अले उन मन की नहीं बुलक तरह जानो
1: पीला मन चो बोल तो काय तो मया रही से ने की जलता है दादा दीदी मन हम के भेट घाट कर दे जुहार कर दे बल सोद बे ने तो सब पाए रेडियो सुन तो सब पाए नान नानी पीला मन के आम चो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़
0: दक दादा दीदी मन संगे भेट घाट हो लू पीला मन संग बोले मया दया चो गोड़ मन के कर लू ने
1: का है रोज दिना दीदी दादा दीदी मन काजे कहीं ना कहीं गोट मन अंतिश रूम सी ने आज दी असनी आमी आन लुसे पिला मन काजे ने पिला मन का आजकल पिला मन पेर स्कूल मन जाऊ मुरियाला से स्कूल मन खुल तो के ने स्कूल में जाऊ रंग रंग चो का तो मन के सिकुक मुरियाला से भी ने
0: उसने चिदक स्कूल में ने तो जाऊन बाती सीख तो काजे सीखे चल सीखे चल चिमा अंतर दक कोनी कोनी फिल्म नौसन बोल रुवात जोन एकदम आया बाबा चो जोन गुण मन रुवा है ने उनकी आगे दर उन जाऊँ तो आगे बढ़ुआ तो उन मंतन पीला है वेरा ले अच्छा सीख तो गुण मल रुवा है तो असनी पीला मन कोनी कोनी आसो तोती तो असन पीला मन के आप लोग जोन उन्हें रासी उनकी किंड और आगे बढ़ा तो कोशिश कर तो खूबी जरूरी है ने
1: हो आजकल जो पीला मन के खिनिक खाई बल्लो ने मैं स्कूल नहीं जाए एक रुक मक नहीं दिया मैं एक रुक नहीं दिला जल कहीं को रुक नहीं स्कूल बल नहीं जाए असन टाइप चो बुलवात ने उन्हें मन के पिला मन के का दादा दीदी मन के बल सोचते रहे ने पिला मन के नहीं खींचते रहे जो उन मन के करुक भाई से सिकुक भाई से उनके सिखाते रहे और खिड़ी असन कहानी मन के सांग तो रहा है जो उन मन आप लोग मन में का तो आप लोग मन में लिखोत और काल्पनिक बल्लो का तो करते जाओ तो नहीं
0: और असनी करते गेले ने उन मंचो जो ने बुद्धि आए उन भारते जाए से और भले कहीं ना कहीं काम बुता कर तो उन मंचो ललक पैदा हो इस नहीं ने
1: कोके तो नहीं अड़मा कोके तो पेंट करू बाय से पेंटिंग कर सोत ने उनके बाय से कोके तो आंडी चो माटी चो खिलो ना मन बना लाए भाई से कोके तो बांस चो बांसुरी का बुलात गपाटुकना

0: हाले अमरा हूँ।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोय लेकिन 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोय 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलावायो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 1% जीएसटी मोला देने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
0: तो सुमारी ये जोला जाला गोड मन के तम रालू ने आली आमचो दादा दीदी मन का जे रोज खाई ना खाई आमी दरु ने वाम ने
6: हो
0: तो आज ही आमचो मोटर ने काय आज संग दक
6: सुनो कविता ये अलबी है ये कविता है वर्षा आके एक ही सांग सोत श्री संतोष कुमार जोशी आली एक कविता की सुनो अड़मा कसन आए जाले ने
0: हाँ आले तेबे ये कविता के बोले आमराव
6: हो
7: मुझे हल्बी कविता चुनाव है वर्षा पानी चो गोट भूईचो उपरे पानी मिरे से भूईचो खाले मिरे दे पानी बादरी गरज ले बरसा होए से बरसा पानी ले धान पान होए से भूईचो उपरे पानी मिरे से भूईचो खाले मिरे दे पानी बादरी गरज ले बरसा होए से बरसा पानी ले धान पान होए से नदी झोड़ी और तरी कुआं ने पानी मिरे से नाना किसम नदी तरी और तरी चुआ ने कीड़ी पराय सोतरन भन नदी झोड़ी और तरी चुआ ने पानी मिरे से नाना किसम नदी तरी और तरी चुआ ने कीड़ी पराय सोतरन भन सावन महीना ने बादरी घुड़ले से बरसा होए से राई झाई रोपलो बुनलो धान के दखुन हरिक हो से हामी तुमी सावन महीना ने बादरी घुड़ले से बरसा होए से राई झाई रोपलो बुनलो धान के दखुन हरिक हो से हामी तुमी गांव ने दखा शहर ने दखा पानी भोए

डोबरा तरई चो पानी की पीऊ से बीमार हूं से आमी अपरंपार। गांव ने दखा शहर ने दखा पानी भोए से नारखार। डोबरा तरई चो पानी की पीऊ से बीमार हूं से आमी अपरंपार। जेठ गेले बरसा ऐसे बरसा होए से राई झाई। बरसा पानी गच खुट के पाए से रान बंचो मोहकमा बाड़े से। जेठ गेले बरसा आए से बरसा होए से राई झाई। बरसा पानी गच खुट ने पाए से रान बंचो मोहकमा बाड़े से। पहिल बरसा पानी पड़ली जाले कुए से सरगी पांचो पाना। सरगी पाना कूले बोड़ा निकरे से डेंगूर भिजले संगे छाती फूटे से। पहिल बरसा पानी पड़ली जाले कुएं से सरगी पांचो पाना। सरगी पाना कूले बोड़ा निकरे से डेंगूर भिजले संगे छाती फूटे से। बोड़ा छाती के घेंसोत लोग मन बनासोत गोंदरी मिरी संगे पुड़गा। बोड़ा छाती ने विटामिन होए से जीवना चो बाढ़ती के नुको करे से। बोड़ा छाती के घेंसोत लोग मन बनासोत गोंदरी।

खोदरा मुंडा और तरई बुड़े से खोदरा तरई ने जनावर नहाऊ से रांधा बाड़ा संगे संगे पानी की पीऊ से बरसा होले पानी मारे से खोदरा मुंडा और तरई बुड़े से खोदरा तरई ने जनावर नहाऊ से रांधा बाड़ा संगे संगे पानी की पीऊ से।

आंगनबाड़ी स्कूल जीवना के नगद चला तो काजे रोजगार और ये जमाए काम बुता के दखा रखा कर तो काजे ग्राम सभा चो हक और कितरो हक पंचायती राज ने रैयत के मेरली से।

असने रैयत राज ने कोनी गलत काम नी करो, गांव चो धन के एकला नी खाओ, ईमानदार ने काम करो, जमाए काम बुता चो जानकारी, गांव चो लोग के रहो, सरकारी लोग गांव चो काम काजे जिम्मे धरुन काम करो, जमाए काम बुता चो खबर जमाए लोग के रहो, कोनी कलडप करे से जाले उनके कार्यवाही हो, इस जमाए के दखुन सरकार आमचो काजे आनली, सूचना चो अधिकार अधिनियम 2005। ये अधिकार ने रैयत काई बले काम बुता चो खबर धरुक सके और काम करिया के खबर देव पड़े दे। ये बले होय से सूचना चो अधिकार अधिनियम 2005। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 भीतरे केंद्र सरकार राज्य सरकार चो अधीन ने काम करु जम्मा ऑफिस नहाले केंद्र नहाले राज्य सरकार ले पैसा धरुन काम करतो संस्था मन के शामिल कर लो आसे। ये काम चो दखारा का काजे केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग बनली से। ये अधिकार भीतरे केंद्र आरु राज्य शासन चो जमाए ऑफिस मन ने जन सूचना अधिकारी बना लो आसे। असने कोनी खबर दे तो काजे होय नी होय बल्ले उपरे अपील कर तो काजे राज्य सूचना आयोग आरु केंद्रीय सूचना आयोग बनली से। इथाने मुख्य सूचना आयुक्त आरु सूचना आयुक्त काम कर सोत। आमी सूचना चो अधिकार अधिनियम बाटले कोनी बले ऑफिस ले काई बले काम बुता चो जानकारी के मांगुक सकू दखुक सकू। जानकारी लिखुन दे दे सीडी ने दे दे और बले कित्र उवाटले आमी धरुक सकू।

आमके कई बानी चो खबर धरतो होले हुनाफिस चो लोक प्राधिकारी अधिकारी सूचना अधिकारी लगे आवेदन करतो राय। आवेदन संगे 10 रुपया नगद मनी आर्डर पोस्टल आर्डर नहाले चालान हुनाफिस चो लोक प्राधिकारी चो नाव ने आवेदन संगे जमा करुकला।

हुन हिसाब ने नहाले खबर सीडी ने धरतो होले हुंचो हिसाब ने आम के पैसा पठाओ लागू आए आमी खबर के असन नहीं धरुन दखा तो काजे बले बलुक सकू दख तो होले पहिल एक घंटा काजे काई पैसा नहीं लागे हुंच पाछे हर 15 मिनट जो आम के 5 रुपया पठाओ पड़ुआ असन आवेदन लगा ले पूरे बीता आम के 30 दिन ने खबर दे दे नहाले 30 दिन भीतरे खबर धर तो काजे कितरो पैसा जमा करुक लागे दे एके सांगे दे नहाले काय कीर्ता ने खबर नी देउक सके सूचना अधिकार धारा 8 और 9 भीतरे आम के सांगे दे गरीबी रेखा चो लोग के सूचना अधिकार भीतरे उपरा पैसा नी लागे मंतर एचो काजे आवेदन लगाओ बिता के गरीबी रेखा प्रमाण पत्र काई बले जमा करुक पड़े दे उनके सूचना अधिकार भीतरे उपरा पैसा देउक नहीं लागे।

कुनै जनसूचना अधिकारी 30 दिन भित्रै खबर निदिले आमी खबर धर्तु काजे अपिली अधिकारी के आवेदन करुक सकूं। असन करले हुन अधिकारी के होकाने खबर देव पड़े दे नाले हुनके जुर्माना वाले होक सके। आवेदन देव बिता के अपील करतु अधिकार धारा 7 चो उपधारा 1 आरु उपधारा 3 चो खंड कने आसे। अपील करले 30 दिन भित्रे अपीली अधिकारी एचो निपटारा करे दे। कोनी मनुक जानून जानून गलत खबर दिले आधा खबर दिले नाले खबर देतो काजे उल्टा सीधा गोठियाले असन लोग के राज्य सूचना आयोग नाले केंद्रीय सूचना आयोग 250 रुपया ले धरुन 25,000 तक जुर्माना वाले धरुक सके। असन करुन आमी खबर धरुक सकूं आरु पूरे बिता के खबर देव पड़े दे। ये सूचना अधिकार भित्रे कोनी कोनी खबर के नी देतो नियम बले आसे। जसन देश जो अखंडता सुरक्षा वैज्ञानिक रणनीति विदेशी खतरा बीती जानकारी के ऑफिस बिता नी देओत। संसद आरु राज्य विधानसभा चो विशेषाधिकार बीती खबर खबर ले तीसर के नुकसान हो तो खबर नाता रिश्ता जीवन रक्षा अपराधिक के गिरफ्तार करतो ने अड़चन व्यक्तिगत सूचना आरु आमचो देश चो रक्षा करू सुरक्षा मंचो खबर के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ले अलग संगालो आसे। ये हक बले आम के पंचायत राज भित्रे शासन च लोक के जवाबदेही बनाउन काम बुता नंगत करो बलून मिरले से। जोन बले असन खबर धरतो मन करसास कहीं जानो खोजसास आप लो हल्का चो काम बुता के नंगत कराओ खोजासास आप लो गांव पारा चो जीवना के उजर बनाओ खोजसास आमचो देश चो लोकतंत्र गणराज्य के बरसक बनाओ खोजा सा जाले उठावा पेन कागज और मांगा सूचना अधिकार अधिनियम चो हक ने खबर। गांव चो बाढ़ती काजे ये हक के बले तुम्हें गांव चो पंचायत बैठक ने ग्राम सभा बैठक ने सांगा रैयत राज चो हक के जाना माना और धारा तेबे आमचो जीवना ने नंगत उजर होए दे और हरिक ने नाचुन गाउन बलवा।

जमा एक सुनलास नफा धरा आज गांव पारा चुबारती काजे बनली पंचायती राज। जमा एक सुनलास नफा धरा आज गांव पारा चुबारती काजे बनली पंचायती राज। आज चो भाग यथाथे बाउन धरे से मो चुबाट नुआ भाग संगे फेर होएंदे तुम चो संगे भेटघाट। आज चुभाग के यथाथे बाउन

0: ग्राम पंचायत की विकास गाथा। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इसमें आपने सुना वार्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस विषय पर। वार्ताकार थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। रैनी लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए बंसिंह कश्यप और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत।

0: रैनी। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बंसिंह कश्यप और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। एफएम बैंड और मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। पेश है गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने। गीत लिखा है श्याम अनुरागी ने।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को सुरबद्ध किया है ललित ने।

गीत लिखा है सलीम बिजनौरी ने, डब्बू मलिक के संगीत निर्देशन में इसे गाया है अलका याग्निक ने। आइए सुनिए ये गीत।

अभी आप आनंद ले रहे थे गैर फिल्मी गीतों का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर इस समय आपने आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को ट्यून किया है। समय है रात्रि के 10:30 का। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने। फिल्म का नाम है इतिहास।

मैंने दिल तुझको दिया। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए इस फिल्म से। गीत है फैज अनवर के, संगीत है डब्बू मलिक का, आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत खूबसूरत कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और नीरजा पंडित की आवाज में गुलजार के शब्दों को सुरबद्ध किया है जतिन ललित ने।

आशा भोसले की आवाज में अब लीजिए सुनिए राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने। फिल्म का नाम है लूट मार।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है आनंद राज आनंद ने। अन्नू मलिक के संगीत निर्देशन में इसे गाया है अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है कृष्णा।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जॉली मुखर्जी और अलका याग्निक का गाया ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत दिबद्ध किया है दिलीप सेन और समीर सेन ने। फिल्म का नाम है रघुवीर।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।